मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 मिनट 37 सेकंड हुए। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन

0: ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार मंथन।

जैसे सूर्योदय के होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती हैं। अमृतलाल नागर।

अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले प्रस्तुत है प्रकाश तिवारी के स्वर में डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य की ये देशभक्ति रचना।

अभी आपने डॉक्टर रामो वल्लभ आचार्य की ये देशभक्ति रचना सुनी, स्वर प्रकाश तिवारी का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुभाष जैन अजल का लिखा ये भजन, गायक हैं अनूप जलोटा। इस भजन में सच्चे और निश्चल प्रेम के सामने ईश्वर का झुक जाना ये बताया है। भगवान श्री कृष्ण कोई द्वारकाधीश या त्रिलोकी के स्वामी नहीं, बल्कि ब्रज के एक सीधे साधे ग्वाले हैं, जो अपने मित्रों के प्रेम में इतने बंधे हैं कि उनके लिए अपनी भगवान की सत्ता को भी भूल जाते हैं। इस भजन में वो अपनी माता यशोदा से सच कहते हैं, ये जो मेरे बाल सखा सुदामा श्रीदामा है, यही मेरे सच्चे हितैषी है। वे मैया से कहते हैं, माँ ये ग्वाल बाल मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी खेल खेल में मुझसे रूठ भी जाते हैं या मेरी शिकायत लेकर तेरे पास आ जाते हैं। इनका ये गुस्सा भी प्रेम का ही रूप है।

विपिन सचदेवा के स्वर में भी आपने ये भजन सुना, और इसके पहले जो आपने भजन सुना था उसे गाया था संध्या मिश्रा ने। अब आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में योगेश की ये भक्ति रचना।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन विचार क्रांति। आलेख श्रीमती कमल शर्मा का है, वाचक हैं दिनेश नामदेव।
1: मनुष्य की विचारधारा जैसी होती है वो वैसा सोचता बोलता और करता है। आज व्यक्ति का मानसिक स्तर गिर जाने के कारण ही समाज में दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं। समाज में पाप, छल कपट, दंभ, अंधविश्वास और शोषण आदि दोषों की बहुलता हो गई है, जिस कारण समाज में भारी अव्यवस्था फैल रही है। विकृत सोच ने मनुष्य को स्वार्थी, संकीर्ण सुख सुविधाओं के पीछे भागने वाला बना दिया है। इसीलिए पारिवारिक विघटन भी हो रहे हैं। उद्दंडता, असंयम, अहंकार प्रदर्शन, संपदाओं के संचय और विवेक के परित्याग ने तो मनुष्य का नैतिक स्तर और भी गिरा दिया है। कुंठाओं में उलझकर मनुष्य नारकीय जीवन जीने लगा है। विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाना इन सब समस्याओं का एकमात्र समाधान है। कितनी ही प्रथाएं, मान्यताएं और परंपराएं ऐसी होती हैं जो निश्चित समय के बाद समाज के लिए हानिकारक हो जाती हैं, जिनका बदलना आवश्यक हो जाता है। इस परिवर्तन के लिए व्यक्ति के विचारों का बदलना जरूरी है। इस भौतिकवादी युग में विकृत लोक मन स्थिति को बदलकर ही समाज में व्याप्त नारकीय स्थिति को स्वर्गीय बनाया जा सकता है। उत्कृष्ट विचार ही अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। बौद्ध और ईसाई धर्म के प्रचारकों द्वारा किया गया सद्विचारों का प्रचार प्रसार हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत की जनता के विचारों में परिवर्तन करके ही देश को स्वतंत्र कराया था। विचार क्रांति वो प्रक्रिया है जो जनमानस की दुष्प्रवृत्तियों और दुर्भावनाओं को उलटकर सीधा कर सकती है। आज की कठिनाइयां तो मनुष्य ने अपनी दुर्बुद्धि के कारण ही आमंत्रित की हैं। इन समस्याओं का समाधान प्रतिबंध लगाने से या नए नए कानून बनाने से, संघर्ष या युद्धों से नहीं होगा, वरन इनका सुधार केवल आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाने से ही हो सकता है। दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करके मानव कल्याण और विश्व शांति की बात सोची जा सकती है। कई महापुरुषों और समाज सेवियों ने इसी दिशा में सक्रिय होकर समाज में व्याप्त हानिकारक विचारों और प्रथाओं का विरोध करके कई क्षेत्रों में नई क्रांति लाने का प्रयास किया और वे कुछ सीमा तक अपने कार्य में सफल भी हुए हैं। इन्होंने बाल विवाह, मृत्यु भोज, छुआछूत और लिंगभेद जैसी पुरानी कुरीतियों और परंपराओं से समाज को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। आज भी सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक प्रवचनकर्ता सद्विचारों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि श्रोतागण अच्छे विचारों को सुने, समझें, हृदयंगम करें और उनको अपने जीवन में उतारें। इस युग की सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं बल्कि मस्तिष्क में उठने वाले उत्कृष्ट विचार हैं, जो व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, परिवारों का विघटन रोक सकते हैं और समाज में व्याप्त उच्छृंखलता तथा अराजकता पर नियंत्रण पा सकते हैं। सत्य, अहिंसा और अस्तेय का पाठ पढ़ाकर इस विभीषिका से पार पाया जा सकता है जो जनमानस को नारकीय जीवन जीने पर विवश कर रही है। शिक्षा और विद्या भी बहुत सीमा तक विचार क्रांति लाकर जनमानस में अच्छे विचारों का बीजारोपण कर सकती है। विद्या हमें संयमी, उदार, सत्यभाषी, क्षमाशील, कर्तव्यपरायण, कर्मठ और साहसी बना सकती है, जिससे आपस में भाईचारा बढ़ता है। हमारे मनीषियों द्वारा भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने का स्वप्न केवल विचार क्रांति के द्वारा ही संभव है।
0: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे चिंतन विचार क्रांति। आलेख श्रीमती कमल शर्मा, कथावाचक थे दिनेश नामदेव। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस का गायन, स्वर अनूप चलूटा का है।

अपने दल के वयोवृद्ध सदस्य का कथन निषाद राज को जचा। बूढ़ा ठीक कह रहा है, मूर्ख होते हैं जो बिना विचारे जल्दी में काम करके बाद में पछताते हैं। अतः भरत का शील स्वभाव जानकर ही युद्ध अथवा मित्रता करना श्रेयस्कर होगा। पहले भरत से मिल लेना उचित समझकर निषाद राज ने कंद मूल फल इत्यादि मंगवाए और भेंट का सामान सजाकर उनसे मिलने चले। भरत के दल के निकट पहुंच निषाद राज वहां मुनिवर वशिष्ठ को देख दूर से ही अपना परिचय देकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वो श्री राम के मित्र हैं, ये सुनकर भरत रथ से उतर आते हैं और दंडवत पड़े निषाद राज को उठाकर अंक में भर लेते हैं। लगता है जैसे स्वयं लक्ष्मण से उनकी भेंट हो गई हो। भरत तथा निषाद का ये मिलन देख देवगण धन्य धन्य कह पुष्प वर्षा करने लगते हैं। जिसे इस लोक में अत्यंत तुच्छ और नीचा माना जाता है, उसी निषाद को गले लगाकर भरत अत्यंत पुलकित हो जाते हैं। इस निषाद को तो श्री राम ने छाती से लगाकर जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, स्वर अनूप जलूटा का था। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि सामयिकी। इसमें आज सुनिए गन्ने के रोग के बारे में जानकारी।
1: जब गन्ना में भैया रोग राई लग जाते हैं तो जो शर्करा की मात्रा है बस वही प्रभावित होते है, तो उसे गन्ना की गुणवत्ता पे असर पड़ता है। ये फफूंद से लगवे वाले रोग में प्रमुख है लाल विगलन या लाल सड़न रोग और कंडुआ रोग। लाल सड़न रोग एक प्रकार की फफूंद से फैलत है, जो तो अपन सब जानते हैं। तो जो लाल सड़न रोग की बात कर रहे हैं, जो मुख्यतः वृंत जिखे अपन तना कहते हैं और पत्तियों पे होते है, ग्रसित वृंत के या तना के जब अपन बीज से चीर के देखते हैं तो ओके ऊतक लाल रंग के दिखाई देते हैं और इमें एक ऐसी दुर्गंध आती है कि जो न अपन के लगत है कि जा गन्ना की तो नहीं। और जब रोग की अवस्था बढ़ जाती है तो यही तना जो है सूख जाते है और एको छिलका सुकुड़ के धस जाते है। ये भाग में काले उभरे हुए बिंदु दिखाई देते हैं जिनमें के फफूंद की असंख्य बीजाणु उतर पे रहते हैं, जो हो सकत अपन के आंख से ने दिखाएं। ये नुकसान पहुंचेवे वाले मुख्य कारक हैं। जो रोग उन खेतों में अधिक होते हैं जहां पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, और एक वजह और होते है कि जो रोग लगत है कि खेतों में पोषक तत्व की कमी या लगातार एक ही जाति के गन्ना की खेती अगर अपन एक ही खेती में कर रहे हैं और वो खेत में गुड़ाई और निंदाई अपन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ये रोग को आक्रमण हो सकते हैं। ये रोग के नियंत्रण के लाने अपन पहलो काम तो जो करें कि गन्ना की उन खेतों में बुआई करें जिनकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो और पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था हो। लगातार एक ही खेत में गन्ना न बोएं। कहवे को मतलब जो के रोगग्रस्त क्षेत्रों में या जहां अपन देखें कि इन क्षेत्रों में रोग ज़्यादा लग रहा है तो उतने 3 वर्षों तक अपन के फसल चक्र अपनाव चाहिए। रोगग्रस्त फसल की पेड़ी बोनी के प्रयोग में अपन बिल्कुल नहीं करें। बोनी के समय पूरियों के सिरों की जांच कर लो चाहिए। अगर लाल धब्बा दिखे तो ऐसे टुकड़ा अपन का करें अलग कर देवे। किसान भैया बोनी के पहले होल बना के आधे घंटे तक इन्हें डुबो देवे और ओके बाद इनकी बुआई करें। जो उपचार अपने गन्ना की फसल के रोगों से बचा सकत है। रोगग्रस्त फसल को अगर अपन देखते हैं कि अपन ने कटाई करके या उन्हें उखाड़ के अलग कहूँ रख दो है तो ओको जो भी अवशेष है ओके अपन नष्ट कर देवे, फसल के आस पास न रहे, एको विशेष ध्यान रखें। रोगरोधी जातियों की खेती करे से अपन ए रोग से अपन अपनी फसल के बचा सकते हैं। किसान भैया रो कंडुआ रोग जो भी एक फफूंद से लगवे वालों रोग है और जो रोग फसल के बीज या पेड़ी से फसल पे होते है, एक तो पहलो काम अपन जो करें कि रोगी पौधों के सिरों पे काले रंग को चाबुक के प्रकार को भाग अगर निकलत भाव दिखाए तो अपन समझें कि इमें कंडुआ रोग के लक्षण शुरू हो गए। ऐसे पौधों के सिरे स्वस्थ पौधों की तुलना में अपन देखते हैं तो 1.5 से 2 गुना लंबे और पतले होते हैं। पत्तियां इनकी ऊपर की ओर खड़ी भई अपन के दिखाई देती हैं। ये कारण अपन खेत में अगर जा रहे हैं गन्ना के तो दूर से इन रोगग्रस्त गन्ना के पौधों के अपन देख सकते हैं। ये रोग को फैलाव काले रंग के चूर्ण जो कि सफेद चमकदार झिल्ली से ढके भय चाबुक के फटवे से होते है और हवा द्वारा अन्य पौधों पर जाके चिपकत है जो और उन्हें ग्रसित करत है। वैसे तो जो रोग पूरे साल कभों भी लग सकत है, मनो अधिक नुकसान पहुंचेवे को समय अप्रैल से जुलाई माह के बीच होते है। ये रोग से 70 से 90% तक फसल के नुकसान होते है। अगर जो रोग 40 से 90 दिन में आते है तब तो पूरी फसल नष्ट हो जाते है। ये रोग की रोकथाम के लाने अपन एक तो जो रोगी पौधा है उन्हें जड़ से उखेड़ देवे या तेज धार के जो चाकू हैं उसे काट के प्लास्टिक के बोरों में सावधानी पूर्वक इकट्ठो कर लेवे और उन्हें नष्ट कर देवे। जब तेज हवा चल रही हो तो इनके ने काटें ने इन्हें उखाड़ें। काय से एक तेज हवा के माध्यम से बीजाणु स्वस्थ पौधों पर जाके उन्हें नुकसान पहुंचा सकत। उपचारित बीजों को उपयोग बोनी में करें। रोगरोधी जातियों को प्रयोग करें।
0: कृषि सामयिकी में किसान भाई सुन रहे थे गन्ने के रोग के बारे में जानकारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर, 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, सुबह 9 लोक संगीत का कार्यक्रम होगा लोक रसधार, कलाकार होंगी मोहिनी तिवारी और रेवाराम विश्वकर्मा, आप सुनेंगे इनके गाए बुंदेली लोकगीत, 9:30 पर नाटक आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा, 10:05 पर सुनिएगा गौरव गान की 150 वंदे मातरम, 10:20 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सारंगा, 11 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

दिन में 1 बजे महिला सभा, इसमें आज आप सुनेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। इसमें आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता मधुमेह हृदय रोग और योग। योगाचार्य अवनीश तिवारी से डॉक्टर बैजनाथ गौतम की बातचीत। 1:33 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, 2 बजे फिल्म संगीत। हमारी दूसरी सभा शाम 5 बजे आरंभ होगी न्यूज़ हेडलाइन से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। 5:33 पर फिल्म संगीत। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 6:30 पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये मैच आप सुन सकते हैं 7:21 पर और रात 9:15 पर। भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे मैच के समापन तक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा

लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति

0: संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of the emergency. The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipu Lake Pass in Pitharagarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. Trade officer and Dharchula Subdivisional Magistrate Ashish Joshi said 26 trade passes have been issued, which include 17 traders and 9 helpers. A customs office has also been opened at Gunji to facilitate the process. Mr. Joshi informed that traders have already stored their goods in warehouses at villages near the Lipu Lake Pass. The India-China border trade originally resumed in 1991 but was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic. House-to-house enumeration of Special Intensive Revision SIR of electoral rolls is set to start in Delhi from the 30th of this month. In this regard, the Chief Electoral Officer, CEO of Delhi, chaired a meeting with the representatives of political parties regarding

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में मंत्रालयों और राज्य सरकारों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साइबर खतरों को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। आज संविधान हत्या दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। इस बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल भोपाल में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 अभियान के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया।
2: साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है, सबसे पहले इस पे कॉल करें। फिर सावधानी की बात आए तो जब भी कोई मोबाइल पे अनजान लिंक आए या अनजान कॉल आए, डरा धमका तो रुको, सोचो, फिर कोई कदम उठाओ। फौरन जल्दी मत करो, लालच में मत आओ, विचार करके आगे बढ़ो।
1: ये अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में एक साथ चलाया जाएगा। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित की जाएगी। 2000 से अधिक प्रतिभागियों वाले इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। वहीं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भूमि आवंटन, भूमि पूजन, लोकार्पण तथा एमएसएमई स्टार्टअप तथा स्वरोजगार अभ्यर्थियों को चेक प्रदान करेंगे तथा एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक का उद्घाटन भी करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। कल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर झाबुआ और डिंडौरी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने एनकोड की बैठक में निर्देश दिए कि अब जिले के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में येलो लाइन खींचकर तंबाकू बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि जिले भर में रैलियां निकालकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं 15 से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता पखवाड़े के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के हितग्राहियों को दुग्ध संग्रहण और विपणन की मजबूत व्यवस्था उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल कल लोकभवन में आयोजित पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। भुवनेश्वर में 24 से 28 जून तक आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ी देव मीणा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। पोल वॉल्ट स्पर्धा में देव मीणा ने 5.46 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए स्वर्ण पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देव मीणा ने आगामी एशियाई खेल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। राजधानी भोपाल समेत आसपास के जिलों में आज शाम तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में

मानसून की दस्तक बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांडुना के रास्ते होने के आसार हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में अधिकांश जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर जिले में 22 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई। बारिश शुरू होते ही जिले में खरीफ की बुआई का कार्य भी शुरू हो गया है। जिले में वर्ष 2026 के खरीफ सीजन में 252,624 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें बोई जाएंगी, जिसमें प्रमुख रूप से 233,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोनी होगी, जो कुल क्षेत्र का लगभग 92% है। स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से कल मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्कूलों में बालिकाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन सुविधाओं, प्रथक एवं कार्यशील शौचालयों, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सैनिटरी नैपकिन वितरण व्यवस्था, प्रयुक्त नैपकिन के सुरक्षित निस्तारण के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं तथा जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने दादाजी मंदिर नवनिर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पालखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविर में ग्रामीणों को बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा लोक अदालत के फायदों के बारे में बताया गया। मंडला में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इंदौर के शासकीय महिला पॉलिटेक्निक और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में नामी कंपनियों ने कुल 145 छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए चयनित किया। शासकीय आईटीआई राजगढ़ में नए सत्र के प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बैतूल की ग्राम पंचायत घाट प्रपरिया में कठपुतली के खेल के जरिए ग्रामीणों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जागरूक किया गया और गुना में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत बीनागंज में एक विशेष करियर काउंसलिंग सत्र में एयरफोर्स अधिकारियों ने छात्रों को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर में। आज सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में इनोवेशन की। भारत इनोवेट्स भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों से उभरने वाले नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम एक वैश्विक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो स्टार्टअप विश्वविद्यालयों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अनुसंधान पार्कों सहित भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को निगमों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, त्वरक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, सरकारों और विदेशों में रहने वाले पूर्व छात्रों जैसे अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों से जुड़ता है। बात करें भारत इनोवेट्स 2026 की घोषणा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने फरवरी 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के उद्घाटन के दौरान की थी और इसका आयोजन 14 से 16 जून के बीच हुआ। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना और भारतीय नवोन्मेषकों तथा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं, सीईओ, निवेशकों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे भारत नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संचार विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। बात करें अगर इसके उद्देश्य की, तो भारत इनोवेट्स 2026 का उद्देश्य वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर अनुसंधान आधारित उद्यमिता का समर्थन करके और उच्च शिक्षा संस्थानों से उभरने वाले नवाचारों को गति देकर भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। उच्च शिक्षा संस्थानों से उभरने वाले नवोन्मेषी विचारों, स्टार्टअप और अनुसंधान पहल का समर्थन करके नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, निगमों, निवेशकों और अनुसंधान संगठनों के बीच वैश्विक सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक बाजारों तक पहुँच, वित्त पोषण के अवसर, मार्गदर्शन और उद्योग नेटवर्क प्रदान करके स्टार्टअप के विकास को गति दें, अकादमिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों को बाजार के लिए तैयार उत्पादों और समाधानों में परिवर्तित करके अनुसंधान के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करें, साझेदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाएं, जिससे ज्ञान, विशेषज्ञता और उन्नत प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान संभव हो सके। शैक्षणिक अनुसंधानों, अनुसंधान केंद्रों और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर अकादमिक जगत और उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करें। भारत में नवाचार संचालित उद्यमों, स्टार्टअप, अनुसंधान आधारित उपक्रमों को समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से भारतीय नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच का विस्तार करना, एक ऐसा सतत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाए जो दीर्घकालिक अनुसंधान विकास और उद्यमिता आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, भारतीय प्रतिभा, अनुसंधान क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को विश्व मंच पर प्रदर्शित करके भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करना। अब भारत इनोवेट्स 2026, उसकी जो पात्रता है, उसके जो मानदंड हैं, उसके बारे में अगर बात करें, तो भारत इनोवेट्स 2026 में भाग लेने के लिए आवेदकों को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा संस्थानों, HELS, या केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों से जुड़े मान्यता प्राप्त नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र से संबद्ध होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध
उच्च शिक्षा संस्थान या CFTI में अनुसंधान प्रयोगशाला या प्री इनक्यूबेटर में काम करने वाली छात्र संकाय टी में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान से संबद्ध प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, इनक्यूबेशन केंद्र या अनुसंधान पार्क में विकसित नव प्रवर्तक टी में भाग ले सकती हैं। स्वतंत्र नव प्रवर्तक आवेदन कर सकते हैं यदि वे शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थान या वाणिज्यिक नवाचार संस्थान के नवाचार अवसंरचना के साथ एक औपचारिक संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। भारत में नवाचारों से उत्पन्न होने वाले स्टार्टअप और उद्यमों का कानूनी रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकृत उद्यमों के लिए भारतीय संस्थापकों के पास संस्था में 51% से अधिक स्वामित्व यानी इक्विटी होना आवश्यक है। आवेदकों के पास नवाचार, प्रौद्योगिकी अनुसंधान या स्टार्टअप आधारित परियोजना होनी चाहिए जिसमें विकास, व्यवसायीकरण, वैश्विक सहयोग की क्षमता हो। योग्य

स्टार्टअप नव प्रवर्तक शोधकर्ता और उच्च शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय और नामित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा घोषित आधिकारिक आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से भारत इनोवेट्स 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक पोर्टल https://bharatinnovates.in पर जाएं और भारत इनोवेट्स 2026 आवेदन की नवीनतम अधिसूचना देखें। भारत इनोवेट्स 2026 भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो नव प्रवर्तकों, स्टार्टअप, उच्च शिक्षा संस्थानों, निवेशकों, निगमों, वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं को एक साझा मंच पर लाकर इसे और भी सशक्त बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और योगदान की अगर हम बात करें तो ये प्रदर्शनी देश भर से चुने 120 भारतीय नवोन्मेषकों स्टार्टअप की भागीदारी के माध्यम से भारतीय नवाचार को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करती है। ये कार्यक्रम अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक अनुसंधान नवाचार सहयोग में शामिल करके उच्च शिक्षा के नेतृत्व वाले नवाचार को बढ़ावा देता है। 500 से अधिक निवेशकों, वेंचर कैपिटल फर्मों और कॉरपोरेट लीडरों की भागीदारी के माध्यम से वैश्विक निवेशकों से जुड़कर ये भारतीय स्टार्टअप के लिए फंडिंग के अवसर पैदा करता है। तो ये तो कुछ खास खास बातें जो हमने आपसे बताई। अगर भारत इनोवेशन 2026 के महत्व की बात करें तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और उन्नत विनिर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में गहन तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, निवेशकों और निगमों के साथ साझेदारी बनाकर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, मार्गदर्शन, वित्त पोषण और व्यावसायिक नेटवर्क प्रदान करके स्टार्टअप के विकास और विस्तार में सहायता करती है। तो श्रोता, ये थी जानकारी भारत इनोवेशन की और अब सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, अभी आपने फिल्म लगान का ये गीत सुना A.R. रहमान, श्रीनिवास और साथियों की आवाज़ में। गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत A.R. रहमान का था।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया और इसकी शुरुआत 2015 में हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा था। भारत के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया और इसे 177 देशों से समर्थन मिला, जो किसी भी संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के लिए सह प्रायोजकों की सबसे अधिक संख्या थी। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। योग की अगर बात करें तो योग की उत्पत्ति भारत में एक प्राचीन शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक अभ्यास के रूप में हुई। योग अभ्यास शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में मनाया गया। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विचार किया गया, वो इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका बहुत महत्व है। योग ध्यान का एक रूप है जो लोगों के जीवन को समग्र रूप से बेहतर बनाता है। ये मन, शरीर और आत्मा के लिए शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। ये हमारे शरीर को पुनर्जीवित करता है और शांति को बढ़ावा देता है। योग एक ऐसी प्रथा है जो हजारों सालों से चली आ रही है और इसकी जड़ें भारत में हैं। पहले लोग लंबे और स्वस्थ जीवन जीने के लिए नियमित रूप से योग और ध्यान करते थे। हालांकि अब बढ़ती जनसंख्या और व्यस्तता के कारण योग का अभ्यास करना पहले से कम हो गया था, लेकिन योग का अभ्यास करना बेहद सुरक्षित है और हर उम्र के तमाम लोगों, यहाँ तक कि बच्चे के लिए आनंददायक है। जब हम शांत मन से गहन चिंतन में संलग्न होते हैं तो हम अपने भीतर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। योग के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन प्राप्त होता है। योग शरीर और मन को जोड़ता है और हमें शरीर और मन के अनुशासन के बारे में सिखाता है। सुबह सुबह ध्यान करना शरीर और मन को सामंजस्य में रखने और प्रकृति के संपर्क में रहने के लिए आध्यात्मिक अभ्यास है। ये व्यायाम का एक अद्भुत रूप है जो शरीर और मन को नियंत्रित करके जीवन को बेहतर बनाता है। योग ऐसा विज्ञान है जो लोगों को लंबा स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। ये एक ऐसी

दवा के समान है जो शरीर के अंगों के सामान्य कामकाज को बहाल करके विभिन्न बीमारियों को धीरे धीरे ठीक करती है। असंख्य शारीरिक और भावनात्मक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। सुबह नियमित योग अभ्यास बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से राहत प्रदान करता है। आसन शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ सेहतमंद रहने में भी मदद करते हैं, क्योंकि ये भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। ये लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से सोचने, उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और उच्च स्तर का ध्यान बनाए रखने में मदद करता है। कुछ कठिन आसनों के लिए बहुत अधिक लचीलेपन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग एक प्रकार का व्यायाम है जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जुड़ा हो या बूढ़ा, ये इसे कर सकता है। योग को एक कला के रूप में भी संदर्भित किया गया है। ऐसा अनुभवी योग चिकित्सों जो चिकित्सक हैं उनकी अद्वितीय क्षमताओं के प्रकाश में कहा जाता है। ये सुझाव दिया जाता है कि योग को जमीन पर चटाई पर बैठकर किया जाना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी बात थी योग की। तो हम सबको चाहिए कि जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हम योग को नियमित रूप से अपने जीवन में शामिल करें और सुबह सुबह इसका अभ्यास करें।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में ये गीत सुना। फिल्म थी धर्म करम। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी, संगीत से संवारा था राहुल देव बर्मन ने। श्रोताओ, बात करें जीवन की, मनुष्य के जीवन में आने वाली बड़ी बाधाएं प्राय बाहर से नहीं बल्कि उसके भीतर ही उपस्थित होती है। संसार की कठिनाइयां, परिस्थितियों की प्रतिकूलताएं और संसाधनों की कमी उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी हमारे मन में पलने वाली आशंकाएं, संदेह और भय। यही भय हमारे मनोबल को कमजोर करता है और हमारी संभावनाओं को साकार होने से रोकता है। साहस का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति को कभी भय महसूस ही ना हो। वास्तव में वो साहस वो शक्ति है जो डर की उपस्थिति में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समुद्र की ऊंची लहरों को देखकर नाविक भी भयभीत होता है किंतु वो अपने भय के आगे घुटने नहीं टेकता। उसी प्रकार जीवन में सफल व्यक्ति वे नहीं होते जिन्हें कभी असफलता का डर नहीं लगा, बल्कि वे होते हैं जिन्हें डर के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाए। जो लोग डर के भय से अलग होकर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं वही आगे निकलते हैं। भय हमें सावधान कर सकता है किंतु यदि वही हमारे निर्णय का स्वामी बन जाए तो वो हमारी प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जीवन के विभिन्न पड़ाव पर भय की अनुभूति होती ही रहती है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा के भय से अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं, युवा असफलता की आशंका में नए अवसर को अपनाने से हिचकते हैं और अनेक लोग आलोचना के डर से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये नकारात्मक आवाज़ हमारे भीतर घर कर लेती है और हमें विश्वास दिलाने लगती है कि हम सफल नहीं हो सकते। हालांकि जैसे ही हम इस आंतरिक भय से पार पाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के नए आयाम खुलने लगते हैं। जब हम अपने मन की सीमाओं को तोड़ते हैं तब असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सुलभ हो जाते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मक चिंतन और निरंतर प्रयास भय के अंधकार को दूर करने वाले दीपक हैं। प्रत्येक छोटी सी सफलता हमारे भीतर विश्वास का नया प्रकाश जगाती है और हमें ये अनुभव कराती है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। तो हमें किसी भी चीज़ से भयभीत नहीं होना चाहिए बल्कि अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, निर्भय होकर आगे बढ़ते रहना।

श्रोता, ये गीता आपने सुना मन्ना डे की आवाज में। गीत रचना इंदिवर की थी, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और फिल्म का नाम सफर। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर अब समाप्त होता है।

मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपात

0: आगमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
5: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
4: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipulekh Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Kot market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
6: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ashish Joshi said that 26 trade passes have been issued in the first phase, including 17 traders and 9 assistants. A customs office has also been set up at Gunji to ensure the smooth conduct of trade. He said that more than 103 traders have applied for trade passes. In the second phase, another 25 traders will be granted permission. It may be recalled that the border trade between India and China was suspended in 2019-22 due to the COVID-19 pandemic. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
5: Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will launch the country's first hub-and-spoke international air service from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi today. After starting of this service by Air India, Varanasi will be the first spoke city to be connected to the airline's international network through Delhi. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the country's constitution was trampled over in 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. A report.
7: On this day in 1975, then President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed a national emergency under Article 352 of Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. As a result, the executive assumed sweeping powers and greater central control was exercised over state authority. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. Citizens were denied the right to seek judicial remedies for violations of these rights. Pre-censorship was imposed on newspapers and even the Press Council of India, the statutory body responsible for safeguarding press freedom, was abolished. Constitutional amendments during that period barred the courts from questioning the president's decision to declare emergency and excluded the election of the Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha from judicial scrutiny. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
5: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A federal judge has permanently barred President Donald Trump's administration from implementing most of his first executive order on elections, including a proposal requiring documentary proof of citizenship for voter registration. The ruling by U.S. District Court Judge Denise Casper in Boston effectively converts a preliminary injunction she issued a year ago, in which she temporarily blocked many of Trump's efforts to overhaul elections into a permanent ban. Judge Casper ruled that the Constitution gives states and Congress, not the president, the authority to regulate elections, adding that Trump's requirements violated the separation of powers. International Atomic Energy Agency has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the U.S. Talking to reporters in Japan, Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said they will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under International Atomic Energy Agency's supervision. However, Iran's deputy foreign minister said access to its damaged nuclear facilities and nuclear material would only be addressed within the framework of a final deal with the US. In Venezuela, a powerful earthquake of magnitude 7.5 hit Yumari town in the state of Yaraqui this morning. According to the U.S. Geological Survey, this earthquake was the second event in a doublet. Earlier, an earthquake of magnitude 7.2 hit San Felipe in Venezuela, which was the first event in a doublet. This magnitude 7.2 foreshock was followed just 39 seconds later by a larger 7.5 main shock. As per initial reports, multiple structures have collapsed in Caracas, Venezuela. The quake was strongly felt across a large part of Venezuelan territory, triggering alerts in the civil protection systems of the South American nation.
8: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will embark on a three-day official visit to London, United Kingdom today. The Commerce and Industry Ministry said that the visit comes ahead of the entry into force of the landmark India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and the companion Double Contribution Convention on 15th of next month. During the visit,

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

जैसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है, वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही

एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून सन 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया।

जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरीचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा होगी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है। इस अवसर पर भोपाल में भी व्याख्यान का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक 2.0 के उद्घाटन समारोह में जनता को साइबर सुरक्षा के 3 महत्वपूर्ण सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता के बारे में बताया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का 30 जून को समापन हो रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपये की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में कल एक बैठक में स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। ये मैच सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार। इस कार्यक्रम में श्रोताओं पहले आपको सुनवा रहे हैं मोहिनी तिवारी का गाया ये बुंदेली लोकगीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहिनी तिवारी के गए बुंदेली लोकगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं रेवाराम विश्वकर्मा के गए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे रेवाराम विश्वकर्मा के गाए बुंदेली लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार अब समाप्त होता है। मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:30 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित नाटक से हम रिले कर रहे हैं भोपाल केंद्र से।

0: का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे नाटक कबूतरी। इसके लेखक हैं सादत हसन मंटो, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
1: प्रस्तुत है समन्वित नाटक कबूतरी, लेखक सादत हसन मंटो और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव।
1: दुर्गी, आज कितनी ठंड है ना,
2: दांत से दांत बच रहे हैं।
1: हाँ। दुर्गी, आज वो तेरा कंबल वाला दिखाई नहीं दिया जो तेरी तरफ घूर घूर कर देखता है।
2: आज उसे कंबल न मिला होगा। अरे मैं पूछती हूँ चंद्रा, ये मुआ हर रोज मुंह अंधेरे क्यों आन टपकता है? इसकी ना लाल आंखों से मुझे डर लगता है, चरस पीकर आता होगा।
1: जाने क्या पीकर आता है, पर मैं जानती हूँ कि तुझे देखकर उसकी प्यास बिल्कुल बुझ जाती है। दुर्गी, वो तुझ पर बुरी तरह मरता है।
2: तो मैं क्या करूँ, मरता है तो मरे, मेरा पीछा छोड़ दे बस। अगर ये मुआ हर रोज इसी तरह आता रहा और ये बात उड़ती उड़ती कहीं उनके कानों तक पहुंच गई तो बस आफत ही आ जाएगी।
1: अरे तो इसका कोई उपाय कर, ऐसी बातें कब तक छुपी रहेंगी। ये तो तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो सिर्फ तेरे लिए ही आता है।
2: ये तेरे लिए आता है, पहले की बात अलग थी चंद्रा, पर अब तू कोई उपाय बताना कि किस तरह उसका आना बंद हो सकता है। तुझे तो ऐसी बातें खूब सूझा करती हैं।
1: तुझे कैसे सूझेंगी, तेरा मन तो अब उस घुड़सवार थानेदार की बाबत सोचने लगा है जो एक रोज सहरा बांधकर तुझे ले जाएगा और तुझे वो तमाम बातें सुनाएगा जो अभी तक तुझसे नहीं कर सका है।
2: हट।
1: मैं कहती हूँ दुर्गी, तू बड़ी भाग्यवान है जो ऐसा अच्छा वर तुझे मिल गया।
2: तुझे भी मिल जाएगा, पर मेरा दिल तो बताशे की तरह बैठ रहा है। इस निगोड़े कंबल वाले ने ना मेरी रातों की नींद उचाट कर दी। चंद्रा,
1: हाँ?
2: ये कौन खकार रहा है? ओए माँ, ये तो वही है।
1: हाँ, बबूल के नीचे खड़ा है।
2: अंधेरे में यूं दिखाई दे रहा है जैसे पेड़ की छाल उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई है।
1: देख, मेरा कहा मान और आज उससे मिलकर सारा झगड़ा ही चुका दे।
2: ना ना बाबा।
1: हाँ, साफ साफ कह दे कि यूं किसी के पीछे परछाई की तरह लगा रहना अच्छा नहीं, और जो मन में आए उससे कह दीजो ताकि उसको पता लग जाए कि इन दिलों में तेल नहीं, समझी?
2: पर मुझे बहुत डर लग रहा है चंद्रा, कहीं ऐसा ना हो कि...
1: ऐसा ना हो, वैसा ना हो, अब तू इस सोच विचार को छोड़, जा उससे बात कर, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जा।
2: जाती हूँ, जाती हूँ।
1: अब चली भी जा, खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर मेरा मुंह क्या देख रही है, जा ना।

0: ए चंद्रा, तू भी साथ चलना, दोनों उससे बातें करें। हा?
1: तो ठहर, मैं उसे यहीं बुलाती हूँ, खड़ी रह तू। सुनिए सुनिए,
0: वो आ रहा है। पहले पहले तू ही बात कर, मुझसे तो ना बोला जाएगा बाबा।
2: जी जी, मुझे क्या आपने बुलाया था?
1: हाँ, हमने ही बुलाया था। बोलो, तुम क्या चाहते हो? तुम इस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ते? क्यों हर रोज तुम इस मंदिर के पास आकर खड़े होते हो? अगर तुम्हें पूजा करनी होती है तो तुम मंदिर में क्यों नहीं आते? बाहर सर्दी में क्यों ठिठुरते रहते हो?
2: देवी, पूजा मंदिर के बाहर भी हो सकती है।
1: सुना सुना तुमने दुर्गी?
0: चल चल चंद्रा, चले यहाँ से।
1: रुक, अगर तुझे मंदिर के बाहर पूजा करनी है तो कर, पर दुर्गी की तरफ घूर घूर कर क्यों देखता है?
2: मैं तो जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे अपने ही विचार नजर आते हैं। इसको तो मेरी आंखें देख ही नहीं सकती, मेरे विचार हर चीज पर कोहरे की तरह छा जाते हैं।
0: जाने क्या क्या पहले बुझा रहा है, चल ना चंद्रा।
1: ठहर दुर्गी, मुझे पूरी बात तो कर लेने दे। इसका मतलब ये है कि तू अपना हट नहीं छोड़ेगा?
2: हट हट तो वो कर सकता है जिसमें हट करने की शक्ति हो। मैं क्या हट करूंगा, मेरी तो कोई भी चीज मेरे कहने में नहीं है।
1: तभी तो ये पागलपन तेरे सिर में समा गया है।
0: अच्छा, मैं तुझसे एक बात पूछूं, क्या क्या तू मुझसे प्रेम करता है?
1: बोल, जवाब दे इसकी बात का।
2: अब कोई बात जवाब देने की नहीं रही। मैं कल से इधर नहीं आऊंगा।
0: चंद्रा, इसकी आवाज में इन सूखे हुए पत्तों की सी खड़खड़ाहट थी। इस आदमी से मुझे इतना डर क्यों लगता है?

0: दूर तक जिधर नजर दौड़ाता हूं ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देते हैं जिनकी टहनियों से पत्ते यूं झड़ गए हैं जैसे मेरी आशाएं। अब मैं भी इस वीराने का एक रुंड मुंड पेड़ हूं। हवाएं उदासियों से बोझिल हो रही हैं, सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं तो ऐसा मालूम होता है उदास दिल धड़क रहे हैं। मुझे ये क्या हो गया है? तुम कौन हो?
1: मैं कमलो हूं।
0: कमलो कौन? तू यहां झाड़ियों के पीछे क्यों छुपी हुई थी?
1: मुझसे किसी ने कहा था कि तुम साधु हो, दिल की बातें बता सकते हो। मैं तो तुमसे कुछ पूछने आई थी।
0: ये तुमसे किसने कहा?
1: ये तो सारे गांव वाले कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: गांव में आजकल तुम्हारी बहुत चर्चा है। लोग कहते हैं कि तुम दुनिया छोड़कर इस जंगल में आ बैठे हो और ईश्वर भक्ति कर रहे हो। अगर तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा।
0: जो अपने लिए कुछ ना कर सका वो तेरे लिए क्या कर सकेगा भोली लड़की? ये दुनिया वाले कैसे हैं? जो आदमी बिल्कुल निराश होकर एक कोने में बैठ जाए उसे अपनी मुश्किलें आसान करने वाला समझने लगते हैं। अच्छा बोल तो सही, तू क्या चाहती है?
1: इस फागुन को मेरा ब्याह होने वाला था पर।
0: बोल बोल। इस फागुन को मेरा ब्याह होने वाला था पर?
1: हमारे गाँव का एक पटवारी है, उसकी बापू से नहीं बनती। उस कलमुहे ने भांजी मारी और ब्याह रुक गया। कोई ऐसी बात करो जिससे ये रोक दूर हो जाए। अगले महीने दुर्गी का ब्याह हो रहा है।
0: क्या?
1: और वो मुझसे 2 बरस छोटी है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ?
0: दुर्गी का ब्याह हो रहा है? क्या सचमुच दुर्गी का ब्याह हो रहा है?
1: हाँ।
0: क्या क्या अगले महीने वो ब्याह दी जाएगी? अगर ये सच है तो वो इतनी सुंदर क्यों थी?
1: क्या कह रहे हो ये?
0: नहीं कुछ नहीं, पर मैं तेरे लिए जरूर प्रार्थना करूंगा एक शर्त पर, कि तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा।
1: मैं जरूर करूंगी।
0: कमलो, जब दुर्गी सज धज कर दुल्हन बन जाएगी और उसका मन कबूतरी के पोटे की तरह आने वाली घड़ियों के गर्म गर्म ख्यालों से भर जाएगा।
1: हाँ?
0: तो कमलो तू उसे एक तरफ ले जाइयो और उसके कान में होले होले कहियो, वो आदमी जो तुझे मंदिर के पास घूर घूर कर देखा करता था वो गुम हो गया है। अब सिर्फ उसकी आवाज रह गई है जो सदा इस गांव की पगडंडियों पर भटकती रहेगी। भूल ना जाइयो कमलो। कमलो
1: हाँ?
0: जब कंवारेपन की लौ आखिरी बार दुर्गी के मुखड़े पर झिलमिलाएगी तो मेरी जगह तू आगे बढ़ेगी और धीरे से कहकर उसे बुझा देगी, ले अब तो फिसल कर अंधेरे में डूब जा। कमलो
1: हाँ?
0: कमलो ये बात तुम्हें कहनी पड़ेगी जब जब शहनाइयां बज रही होंगी और ऐसा मालूम हो रहा होगा कि तीखे तीखे सुर आपस में नन्ही नन्ही चिड़ियों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं, तो कमलो
1: हाँ?
0: तू उसे कहेगी, जा अरमानों भरी डोली में बैठने से पहले उस आदमी से मिला जिसके दिल में अब कोई अरमान नहीं रहा, वो मंदिर के पास तेरा इंतजार कर रहा है।

0: राधा, दुर्गी की चमचम करती चोली की तरफ तो देख, क्या फंसी फंसी आई है।
1: और ये इसकी घाघरी, ऊपर से मोटा, नीचे से खुला खुला झोल, ऐसा लगता है खुम्बी पर तितली बैठ गई है।
2: चल हट मुई, दूर हो।
0: ओफो, बड़ी लाज आती है मेरी बन्नो को। ए दुर्गी, आज रात, आज रात।
2: अरे चंद्रा की बच्ची, चुप कर।
0: अच्छा दुर्गी, मेरी बात तो सुन। आज वो तेरा थानेदार लोट पोट तो हो ही जाएगा।
2: क्यों?
0: तुझे इन कपड़ों में देखकर।
1: अब तो दुर्गी थानेदारनी हो जाएगी।
2: चल हट, तू क्यों जलती है मुई?
0: मेरी बात तो सुन, इधर आ। अरे मुझसे क्यों झेपती है, मैं थानेदार थोड़े ही हूँ। अगर उसने तुझे हथकड़ी लगा दी तो तेरी वो सारी बातें धरी रह जाएगी जो तूने मुझसे कही थी। वो तेरा हट नहीं मानेगा, उसे तो बहुत से घुराते होंगे मनाने के। क्यों राधा?
1: हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डाल दे तो क्या करेगी बेचारी दुर्गी। बाबा वो थानेदार, मैं सुनती हूँ बहुत कड़े मिजाज के होते हैं।
2: अब तो रुकेगी नहीं ना, अपनी बकवास करती ही चली जाएगी। उनका मिजाज गर्म जरूर है, पर मुझसे कुछ नहीं कहेंगे।
0: हाँ, हाथ तक नहीं लगाएंगे, छुई मुई जो हुई।
1: सच सच बता, उनसे मिले तुझे कितने दिन हो गए हैं?
2: मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, और फिर मैं उनसे क्यों मिलने लगी?
0: हाँ, मेरे सामने झूठ बोलने में लाज नहीं आई तुझे? अभी तो उससे कल ही मंदिर में बबूलों के झुंड में छिप छिप कर बातें कर रही थी, और मैं दूर खड़ी देख रही थी कि कोई आ ना जाए।
3: बता क्या क्या बातें हुई।
2: जाने मेरी जूती कि क्या क्या बातें हुई, मुझे क्या गर्ज पड़ी थी उनसे मिलने की। चंद्रा, तू तू मुझसे जरूर पिटेगी।
0: दुर्गी बारात आ गई। दुर्गी का दूल्हा मैंने देखा, बड़ा सुंदर है। ये बड़ी बड़ी काली मूछें, लंबा तगड़ा, अच्छा गबरू जवान है। राधा, चंद्रा, कमलो, आओ चलें बारात देखें, और तू खिड़की से सब कुछ चुपके चुपके देख लीजो।
2: कमलो जा, तू भी जाना, बाहर जाकर तमाशा देख।
4: दुर्गी, मुझे एक जरूरी बात कहनी है तुझसे।
2: जरूरी बात? कैसी जरूरी बात?
4: दुर्गी, वो आदमी जो तुझे मंदिर के पास घूर घूर कर देखा करता था, गुम हो गया है।
2: गुम हो गया?
4: अब सिर्फ उसकी आवाज रह गई है जो सदा उस गांव की पगडंडियों पर भटकती रहेगी। फिर उसने कहा था।
2: क्या कहा था?
4: जब कमारेपन की लौ आखिरी बार दुर्गी के मुखड़े पर झिलमिलाएगी तो मेरी जगह तू आगे बढ़ेगी। तू उससे कहेगी, अब तू फिसल कर अंधेरे में डूब जा।
2: कमलो!
4: उसने ये भी कहा था, जब शहनाइयां बज रही होंगी और ऐसा मालूम होगा कि तीखे तीखे सुर आपस में नन्ही

0: नन्ही चिड़ियों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं। तो कमलो तू से कहेगी, जा अरमानों भरी डोली में बैठने से पहले उस आदमी से मिला जो मंदिर के पास तेरा इंतजार कर रहा है।
1: वो मंदिर के पीछे मेरा इंतजार कर रहा है? क्यों कमलो, वो मंदिर के पास मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी।
2: नहीं आई, बारात चली गई और वो नहीं आई। अरे आती भी क्यों, मेरा उस पर क्या अधिकार था? मूर्ख, वे बोल जो तेरे होठों पर नहीं आए, क्या उन्हीं के बल पर तुझे उसे यहां बुलवाना चाहता था? कैसे कैसे मूर्ख इस दुनिया में बसते हैं। लेकिन वो आ जाती तो उसे आखिरी बार देख लेता, तो क्या होता? सब मन परचावे की बातें हैं।
3: ठीक है।

0: थक गई होगी तुम। यहाँ इस झाड़ की छांव में कुछ देर सुस्ता लें, फिर चलेंगे।
1: मैं तो नहीं थकी जी। आपने घोड़ी क्यों रोक ली?
0: यहाँ कुछ देर बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे। तुम्हारे घर पहुंच गए तो तुमसे बातें करने का मौका कहाँ मिलेगा।
1: आपकी तो बातें ही खत्म नहीं होती, इतनी तो कर चुके।
0: अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की और तुम घबरा गईं। मर्द बड़े बातूनी होते हैं दुर्गी। आओ मेरा सहारा लेकर नीचे उतर आओ।
1: अब नीचे उतरी हूँ तो थकान हड्डियों तक पहुंच गई। चलते रहते तो शायद।
0: औरतें झूठ बहुत बोलती हैं।
1: अरे मैंने कब झूठ बोला जी?
0: अब तुम चाहती हो कि जिस तरह मैं थाने में झूठ बोलने वालों से सच कहलवाता हूँ, उस तरह तुमसे भी कहलवाऊं? ये मैं नहीं कर सकता।
1: क्यों?
0: इसलिए कि तुम्हारे सामने मैं थानेदार नहीं रहता।
1: अच्छा, तो क्या रह जाते हो?
0: सब जानती हो फिर भी पूछती हो। चलो पहले बैठकर कुछ खा लें।
1: लीजिए, अब आपको जो बातें करनी हो कीजिए।
0: अब किस कमबख्त को याद आ रहा है कि क्या कहना था और क्या नहीं। लो थोड़ा सा ये हलवा खा लो, अच्छा लगेगा।
1: अच्छा अच्छा खाती हूँ। आप मेरे मुंह में क्यों ठूसते जा रहे हैं?
0: तुम्हें बुरा लगा?
1: नहीं, बुरा क्यों लगेगा, मैं आप ही खा लूंगी। आप क्यों तकलीफ करते हैं जी?
0: नहीं, तुम्हें मेरी जान की कसम, ये मेरे हाथ से जरूर खाओ।
1: लाइए, खा लेती हूँ। आपने तो मेरे मुंह में ही भर दिया।
0: इस वक्त मेरे पास मोती होते तो मैं उनसे तुम्हारा मुंह भर देता। दुर्गी,
1: कहिए।
0: तुम बहुत अच्छी हो।
1: बस तो मुझे अब पानी पिलाइए, ये आपकी कचौड़ी मेरे गले में फंस गई। पानी पिलाइए ना।
0: पानी तो यहाँ नहीं।
1: अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, घर जाकर पी लूंगी।
0: नहीं, मैं अभी ला देता हूँ। यहाँ से कुआं दूर नहीं है, एक कोस से भी कुछ कम होगा, और तुम्हारा गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। सारा रास्ता क्या प्यासी रहोगी?
1: पर आप क्यों तकलीफ करते हैं?
0: नहीं तो तुम यहीं बैठो।
1: अकेली?
0: अरे तो क्या हुआ, तुम यहाँ बैठो, मैं यूं चुटकियों में पानी लेकर आता हूँ, यहीं बैठी रहना।
1: आप जाइए पर जल्दी वापस आइए। प्यास से गला सूख रहा है, अब ये जल्दी आ जाएं।

0: कंबल वाला,
1: जोगी रोगी होते हैं,
0: वही कंबल वाला।
1: जोगी सोगी होते हैं,
0: हाय राम, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं?
2: ठहरो, भागो नहीं गिर पड़ोगी।
0: तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? तुम यहाँ क्यों मेरे पीछे पीछे आ गए?
2: मैंने तेरा पीछा नहीं किया, ये होनी है जो हम दोनों का पीछा कर रही है। तू अकेली यहाँ क्या कर रही है?
0: मैं अकेली नहीं हूँ, वो पानी लेने गए हैं, अभी आ जाएंगे।
2: तूने मेरी आवाज पहचान ली थी ना?
0: नहीं, मैं जाती हूँ।
2: ठहर जा। तुम मुझसे भाग ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बाहर नहीं तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हालत कस्तूरी मृग की तरह है। दुर्गी, तुम्हें याद है तुमने एक बार पूछा था कि क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जरा करीब आओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ।
0: तुम मुझे सम्मोहित कर रहे हो, क्यों तुम मेरे विवाहित जीवन को बर्बाद करना चाहते हो?
2: दुर्गी, करीब आओ दुर्गी। देखो देखो, आसमान में वो घुमड़ते बादल बरसना चाहते हैं। दुर्गी दुर्गी, तुम बहुत सुंदर हो दुर्गी, बहुत सुंदर हो तुम दुर्गी।

0: दुर्गी, तुम वाकई बहुत सुंदर हो। दुर्गी, लगता है हमें कोई देख रहा है। दुर्गी, दुर्गी,
1: बेचारी के हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी थी।
2: वो कौन था जिसने गोली चलाई?
1: परमात्मा करे ना रहे इस दुनिया के तख्त पर।
2: थानेदार है, गोली मारने वाले को जरूर खोज निकालेगा। हाँ।
1: मेरी तो आंखों से आंसू आ गए जब मैंने दुर्गी को इस हालत में देखा। सेरा लहू निकल गया।
2: मुझे तो उसके बचने की आशा नहीं। तूने रंग देखा, हल्दी की तरह पीला पड़ गया।
1: कुछ बोल ही नहीं सकती थी।
3: दुर्गी, कुछ तो बोलो।
4: थानेदार साहब, अगर आपको कुछ पूछना है तो सिर्फ यह पूछिए कि गोली किसने चलाई। वैद्य जी कहते हैं बस चंद मिनटों की ही बात है, आप जल्दी कीजिए।
3: मैं सब जानता हूँ पटवारी साहब।
0: इन बातों में भी वक्त खराब ना कीजिए थानेदार साहब, ऐसा ना हो कि।
3: दुर्गी,
0: अरे अब जल्दी पूछ लीजिए।
3: दुर्गी, जरा आंखें खोलो और मुझसे कुछ बातें तो करो। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ? अच्छा भला ये तो बताओ कि क्या तुम्हें वो सब बातें याद है जो वहां जंगल में हुई थी? वो हरा भरा दरख्त, वो उसकी घनी घनी छांव, घोड़ी पर से हमारा उतरना, वहां चादर बिछाकर बैठना, याद है तुम्हें सब?
4: थानेदार साहब,
0: अरे आपने इतनी लंबी बातें क्यों शुरू कर दी? जो मतलब की बात है वही पूछिए ना।
3: मैं अभी पूछता हूँ। हाँ दुर्गी, तो ये बातें तुम्हें याद है ना, जब कचौरी खाते खाते तुम्हें प्यास लगी थी और मैं पानी लेने चला गया था और तुमने मुझे कितना रोका था?
2: याद है जी।
0: थानेदार साहब, परमात्मा के लिए आप जल्दी कीजिए।
3: अच्छा दुर्गी, अब ये बताओ कि इसके बाद की घटनाएं भी तुम्हें याद हैं? मैं घोड़ी पर तुम्हारे लिए पानी लेकर आया था, तुम उधर दूर खड़ी थी, फिर क्या हुआ था?
2: तुमने गोली चलाई थी। तुमने?
3: हाँ हाँ, मैंने ही फायर किया था। सामने झाड़ पर मुझे कबूतरी नजर आई थी जिसे बाज दबोचे हुए था, मैंने उस पर फायर किया था। पर तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने मारा? तुम मुझे उसका नाम बताओ। जानती हो,

0: कितनी खौफनाक चीज होती है। उस वक्त तक आदमी रस्सी के फंदे से लटका रहता है जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। अब बताओ कौन आदमी था वो? मेरी बात समझ गई हो ना तुम?
1: समझ गई।
0: दुर्गी।
2: दुर्गी पर लोक से धार गई और ये राज भी अपने साथ लेती गई थानेदार साहब।
3: दुर्गी चली गई। दुर्गी, भले ही तुम पर तुम्हारे पति ने गोली चलाई हो, लेकिन तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं।
2: ये आदमी कौन है थानेदार साहब?
0: तुम कौन हो?
3: मैं कौन हूं?
0: क्या चाहते हो तुम?
3: कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ ये कहने आया हूं कि दुर्गी को मारने वाला मैं हूं। मैंने उसकी जान ली है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।

0: कबूतरी। अभी आप सादत हसन मंटो का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। भूमिका सहित कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। कंबलपोष संजय मेहता, दुर्गी स्वास्तिका चक्रवर्ती, चंद्रा प्रमिला दिवाकर, कमलो अनुराधा चतुर्वेदी, राधा नाहिद जहां सिद्दीकी, पटवारी मनोज राजानी, वैद्य रामरतन सेन और थानेदार देशबंधु शुक्ला। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र पर तैयार किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक कबूतरी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आप सुनेंगे सीधी जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्रा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सीधी जिला इन दिनों विकास, जनकल्याण और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक चलाए गए विशेष जनकल्याण अभियान के अंतर्गत जिले के सीधी, मझौली, कुसमी और रामपुर नैकिन विकास खंडों में व्यापक स्तर पर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य उन परिवारों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक विभिन्न कारणों से वंचित रहे। सीधी विकास खंड में आयोजित जन कल्याण शिविर में 11,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। वहीं मझौली में 3 दिवसीय शिविर में 14,755 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 14,000 से अधिक आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में कृषक चौपालों का आयोजन किया गया। रामपुर नैकिन और कुसमी में आयोजित चौपालों में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, फसल विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, जल संरक्षण और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। ग्रीष्मावकाश समाप्त होने के बाद जिले के सभी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, जिसके साथ ही स्कूल चले हम अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का 100% नामांकन सुनिश्चित करना और ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके लिए विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक, पुष्प और पाठ्य सामग्री देकर किया गया। विशेष भोज, बाल सभाएं और प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित की गईं। वहीं जिले में शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए 6 दिवसीय शिक्षक प्रेरणा व गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। सीधी जिले में समान नागरिक संहिता UCC पर व्यापक जन सुझाव अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़रिया में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में तार्किक एवं तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन विशेष प्रयास कर रहा है। कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत पौड़ी के घटिया टोला स्थित बैगा बस्ती में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ था। नए नलकूप खनन से लगभग 70 परिवारों के 250 से अधिक ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने लगा है। मानस भवन सीधी में आयोजित लोक कल्याण मेले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, डिजिटल भुगतान और वित्तीय साक्षरता पर विशेष जोर दिया गया। मेले में पथ विक्रेताओं को ऋण आवेदन प्रक्रिया, UPI भुगतान, QR कोड उपयोग तथा डिजिटल बैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। स्वसहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉलों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मझौली क्षेत्र में 5 स्वसहायता समूहों को 25 लाख रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया गया है। सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा कर निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सांसद डॉ. राजेश मिश्र और जिला प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों सीधी रेलवे स्टेशन से कुचवाही तक निर्माणाधीन रेलवे ट्रैक का संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ विस्तृत निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने रेलवे ट्रैक के आसपास जल निकासी की समुचित व्यवस्था, संवेदनशील एवं कमजोर स्थलों की पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीधी जिले में योग को जनभागीदारी का उत्सव बनाते हुए 51 स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक रीति पाठक की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का प्रसारण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वस्थ आयु के लिए योग की थीम पर बल दिया। धार्मिक, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक स्थलों सहित पूरे जिले में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और महिलाओं ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। बर्चर आश्रम में स्वामी अड़गड़ानंद महाराज की उपस्थिति में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं योग साधकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के अवसर पर बीते दिनों कैलाश स्वर्ण वृद्धाश्रम पनवा

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है वंदे मातरम, गौरव गान की 1.5 सदी।

श्रोताओं, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचा गया और बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। ये गीत आज़ादी के आंदोलन में भारतीयों के लिए एकता, गौरव और देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक और नारा बन गया था। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ माँ। ये गीत हमारी मातृभूमि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, फलों और नदियों की स्तुति करता है। इसका प्रमुख श्लोक इस प्रकार है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जल से परिपूर्ण, फलों से समृद्ध, दक्षिण की मलय पर्वत की शीतल हवाओं वाली और हरी भरी फसलों से लहलहाने वाली भूमि, हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जो देश की एकता, संप्रभुता और गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये गीत देशभक्ति का मुख्य मंत्र और राष्ट्रीय नारा बना। ब्रिटिश शासन के विरोध में वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए लाखों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी। सन 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे संगीतमय रूप में गाकर देशवासियों के दिलों में राष्ट्र प्रेम की अलख जगाई। इस गीत का शाब्दिक अर्थ है, हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इसके पावन शब्द हर देशवासी के मन में मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और आत्मसम्मान की भावना भरते हैं। देश की आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान जनगण मन के समान ही दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत घोषित किया। आज भी ये पावन गीत हर भारतीय को एकता के सूत्र में बांधता है। राष्ट्र के प्रति इस गीत को गाते या बजाते समय सम्मान में खड़े होना, जिस तरह हम राष्ट्रगान सुनते ही खड़े हो जाते हैं। इसके मुख्य रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने 1882 में उनका जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें शामिल किया। इस गीत की सार्वजनिक प्रस्तुति 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को।

0: मीडिया में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:10 होने वाले हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के कार्यान्वयन से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अमेरिका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान में निरीक्षण करेगी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार पहला भूकंप सैन फिलिप क्षेत्र में आया, जिसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.9 थी। जापान के मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में था। टोक्यो में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही किसी के हताहत होने की खबर है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूकंप के मद्देनजर एक कार्य दल का गठन किया है। विभाग ने और भूकंप के झटके आने की आशंका व्यक्त की है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: राजुला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता मजबूत करना है ताकि कोई भी प्रतिद्वंद्वी, संकट या व्यवधान अमेरिका के प्रमुख हितों को प्रभावित न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
5: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
6: फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको ने आज सुबह मैक्सिको सिटी में चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच जीतकर पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अमल से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। और

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम में ऊपर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत से। बोल राजा मेहदी अली खां के हैं, तर्ज बनाई है मदन मोहन ने, फिल्म है मेरा साया। फरमाइश आप सबकी। नेपाल पैलेस से सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना, निवान शर्मा। पिंडरी मंडला से सुमत कुमार जैन, मीना जैन, वरुण जैन और कबीर जैन। प्रणाम सिटी खंडवा से शिवांश कुमार खंडाले, सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश कुमार खंडाले, अंजलि, संदीप, माधुरी, पिंटू, जयश्री खंडाले। खरगोन से ध्रुवा सोनावणे, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा, शुभम सोनावणे।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरा साया का ये गीत, गीतकार राजा मेहदी अली खां, संगीतकार मदन मोहन।

सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा, हर्षिता, भूमिका, मुस्कान, अभय, श्रवण सिंह गिन्नारे, मालीपुरा खंडवा से यथार्थ कुमार, सुभाष मंदा, राजेश खंडाले, अंजलि संदीप, पिंटू जयश्री खंडाले, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, बिलासपुर शिवरी नारायण से नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी लहरे, महामाया रोड अंबिकापुर से अब्दुल वहीद खान, सलमा बेगम खान, महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल, शीला गायत्री धंजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य।

कार्यक्रम का अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, बोल साहिर लुधियानवी के तर्ज बनाई है रवि ने, फिल्म का नाम वक्त। अनुरोध आप सबका, बिलहरी बड़खीरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, मुन्ना खान। यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, अरुण चौरसिया। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी, गौरव सैनी, राधिका, दीपिका। लक्कड़ बाजार खंडवा से भवानी सिंह बैस, रोहन रिया, रणवीर सिंह, संजय पगारे। गांधी चौक पंजाब से हरदेव मी, कावल विंदर विरक, जयतेग विरक और मिक्का विरक।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म उजाला से, शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ लता मंगेशकर की और पसंद आप सबकी। देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बा शेरे, नूर महल महसूल, सीतामणि बिहार से, मसरत जहानाज, तलअत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, बेगम निकहत परवीन सदफ आरजू, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, सविता माखीजा, बेबी स्वाति और उनके परिवार के सदस्य, ग्राम सर्रई केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा और उनके परिवार के सदस्य।

अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया ये गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। फिल्म है तीन देवियाँ। फरमाइश करने वाले श्रोता, पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या प्रियंका बीटी वाडोदे, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना चांदनी नाज प्रवीण, दातरंगी से द्वारिका वर्मा, किशोर कुमार दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा। इस गीत को सुनना चाहते हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। तीन महुआ खापरखेड़ा रायसेन से तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू और सचिन पटेल। आप सबकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

चौरस सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम सूरज, अनुरोध करता आप सब, बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष गदरे, दिगंबर गदरे, राजेश गदरे, शिवम शुभांग, सृष्टि गदरे, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित, हैप्पी राय, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म रतन से, डी एन मधोक के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है नौशाद ने। इसे आवाज दी है जोहराबाई अम्बालवी और साथियों ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, शारदा सिंह, सपना, सत्यम, शिवम, सौरभ, सृष्टि, मेघा, शिखा, राखी, अन्नु। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या। छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या, सुषमा सारथी। नर्मदा कॉलोनी मंडला से सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी, लक्की, रोली, श्वेता और परू।

लीजिए आप सुनिए शैलेंद्र का लिखा ये गीत, संगीत शंकर जय किशन का है, आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म है बरसात। फरमाइश करते हैं, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी राही, प्रमोद राही, सिद्धार्थ राही, सृष्टि राही, कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, आदित्य शिवानी, मीनूराज, राजपुर से घिस्सू दिलवारे, लक्ष्मी माधुरी, सोनाली भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ, कुणाल दिलवारे, भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, रविंद्र शुक्ला, सावन नायक, वीरेंद्र वर्मा, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई से लक्ष्मण रैकवार, विनीता रैकवार, वैशाली वैष्णवी, अनरथ रैकवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:58 होने वाले। अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उस काल को भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी और भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राज्य एथलेटिक्स अकादमी के देव मीणा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मीणा ने आगामी एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे ये फोन इन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका। सादर वंदन और अभिवादन के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर आपसे बातचीत का सिलसिला। दोस्तों, जिस तरह बदलते मौसम के साथ हमारा रहन सहन बदलता है, उससे पहले हम अपना खान पान बदलते हैं। गर्मी में क्या खाना है या पीना चाहिए, सर्दियों में क्या और आने वाला मौसम यानी बारिश में खान पान कैसा हो, इस बारे में हम अक्सर चर्चा करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी कम होती है कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सेवन समय समय पर करना लाभदायी होता है, और यदि उन्हीं खाद्य पदार्थों का सेवन गलत समय पर कर लेते हैं तो उसका गलत असर हमारे स्वास्थ्य पर होने लगता है। जैसे केला, ककड़ी, संतरा, दही, चॉकलेट, चावल इत्यादि। आज इसी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय कौन सा होता है। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: कौन दीदी बोल रही हैं, कौन मैडम जी बोल रही हैं?
1: जी हम बोल रहे हैं प्रियंका, आपकी अपनी रेडियो संगीनी कार्यक्रम है आज बात आपकी गीत हमारे। अब आप अपना परिचय दे दीजिए।
2: कहते हैं कि चांदनी रात हो तो बरसात बुरी लगती है, और शरीर में दर्द कष्ट हो तो हर बात बुरी लगती है, और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में भोपाल में अगर फोन लग जाए तो सब बात हरी लगती है और बड़ी अच्छी लगती है।
1: जी जी, तो आज
2: हरी लगती है जी। प्रियंका मैडम जी, आपसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है।
1: जी जी,
2: और मैं ग्राम कल्पा जिला सतना से आपका मजनू दीवाना चांद मोहम्मद खान श्रोता बोल रहा हूँ। आप
1: जी बिल्कुल हम पहचान गए, लेकिन आपका परिचय हमारे जो अन्य श्रोता होते हैं उन्हें देना जरूरी होता है, इसलिए हम आपसे नाम पूछते हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं पूछते हैं।
2: प्रियंका मैडम जी, आपसे बात एक बार और हुई थी, काफी दिन हो गए।
1: जी बिल्कुल, दो तीन बार हो चुकी
2: है। इत्तेफाक भगवान की कृपा हो गई, परवरदिगार की दुआ हो गई कि आप ही से बात हुई है मैडम जी।
1: अच्छा, अब आज हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। जैसे हम कभी कई बार केला रात में खा लेते हैं तो नुकसान करता है, तो इस बारे में आपके पास जो भी जानकारी है हमें और हमारे श्रोताओं को दीजिए।
2: अब मेरा मतलब यही कहने का है मैडम जी कि जो खान पीन की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और खाने पीने का सामान होता है उसे समय समय पर ही खाना चाहिए। सभी श्रोताओं से कहना है, जितने ऑल वर्ल्ड के श्रोता सुन रहे हैं, क्योंकि जैसे दिन में दोपहर में तो दाल चावल का ही सेवन करना चाहिए, और ज्यादा खटाई अटाई इस्तेमाल दोपहर में ही करो, रात में ना करना चाहिए, क्योंकि रात में सर्दी जुकाम का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है, और चावल बहुत नुकसानदायक होता है ये भी मैं बता दूं, और खटाई तो रात में नाइट में बहुत ही नुकसानदायक है मैडम जी, और दिन में कितना भी खाते रहो कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि धूप कड़ी होती है
1: जी जी।
2: और समय सही रहता है, और रात में थोड़ी ठंड महसूस होने लगती है, तो ये ठंडी वाले जो आइटम होते हैं। और ये बता दूं कि ठंडे कुछ आइटम खाने के बाद पानी भी पीना नुकसानदायक होता है मैडम जी।
1: अच्छा
2: जी जी, और गुड़ जो है तो गुड़ का सेवन तो 12 महीने अगर करते रहो मैडम जी तो बहुत ही सेहत के लिए लाभकारी होता है, और इस समय तो आम का पन्ना और प्याज खूब खाइए तो गर्मी से निजात मिलेगी, और जामुन इस्तेमाल करिए। तो जामुन खाने से मैं बता दूं मैडम जी सबसे बड़ा लाभ
1: जी,
2: अगर जामुन बंद के आप 1 महीने खा लें तो समझ लो ये शुगर की बीमारी तो हो ही नहीं सकती, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, और आंखों की जोत नहीं जा सकती। ये आंवला और जामुन में बहुत जबरदस्त गुण है
1: जी। ये बात तो आपने बहुत ही कारगर बताई है कि जामुन और आंवला जो है ये आपको शुगर फ्री रखता है,
2: ये बहुत फायदेमंद है मैडम जी। जैसे आंवला

0: कोई बीमारी, कोई मर्ज नहीं आ सकती है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं फेल कर सकता।
1: जी, तो आपका जो कहने का हम अगर निष्कर्ष निकाले तो ये हो सकता है कि जो
0: जी
1: मौसमी फल होते हैं उनका सेवन जरूर करना चाहिए और अधिक से अधिक सुबह के समय करना चाहिए।
0: हाँ, सुबह के टाइम सही
1: जी
0: रहता है मैडम, ये
1: हाँ हाँ
0: फायदेमंद रहता है। और फिर तो दिन भर खाते रहो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि खाना खाने के बाद
1: जी
0: कोई और चीज का सेवन करो तो वो नुकसानदायक ही होता है, ये मैं सत्य बता रहा हूँ।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चांद मोहम्मद जी, और इसी
0: जी
1: तरह
0: मैडम,
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और इतनी लाभप्रद जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को देते रहिए। शुक्रिया।
0: नमस्कार जी।

0: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, गुड
0: आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। गई है?
1: जी मैम, अभी आ रही हूँ मैम
0: हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल। बताइए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये भी
1: जी।
0: बता दिए।
1: मैं पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से। थैंक
0: राय बरेली से पिंकी जी, स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। कैसी हैं आप?
1: यू मैम। हम बहुत मैम आपसे बात करके और भी अच्छे हो गए। आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे श्रोताओं से जब इतनी अच्छी बात होती है तो हम और अच्छे हो जाते हैं। पिंकी जी,
1: जी, और
0: आज
1: मैम हम लोग आपका इंतजार करते हैं, और जब आपसे मुलाकात हो जाती है ना तो मैम बहुत खुशी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी, और खुशी मिलती है तो आपका दिन भी बहुत अच्छा हो जाता होगा, है ना?
1: जी मैम, क्योंकि मैम रेडियो सुनने का हमें बहुत शौक है, और
0: जी
1: जब
0: जी
1: रेडियो पर अपनी आवाज सुनाई देती है ना तो मैम इसकी खुशी और भी ज्यादा
0: अलग
1: हो
0: ही
1: जाती है।
0: होती है, बिल्कुल। तो ये फोन इन कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा लाभ है, जो सबसे बड़ा
1: जी
0: फायदा है, वो यही है कि श्रोता अपनी आवाज भी सुन सकते हैं।
1: जी और
0: जी
1: मैम सभी श्रोताओं की भी आवाज सुनने को मिलती है, और देश विदेश से मतलब श्रोता जुड़ते हैं
0: जी
1: और अपने क्षेत्र के बारे में विशेषताएं बताते हैं, तो मैम बहुत अच्छा लगता है, और
0: जी जी
1: सब
0: जी
1: चीजें जानने को मिलती हैं रेडियो के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी पिंकी जी, अब हम आपसे आज के विषय के बारे में बात करें।
1: जी बिल्कुल।
0: हाँ, आज हमारा विषय है कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। इस विषय में आप क्या जानती है, बताइए।
1: जी मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैम जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो हमें मैम ज्यादा करके तो मैम दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों का सेवन करना चाहिए, ना कि
0: लेकिन
1: कोल्ड ड्रिंक
0: हाँ,
1: का और चाय का,
0: बिल्कुल
1: ऐसी गर्म चीजों का मतलब खान पान नहीं करना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: और
0: लेकिन
1: मैम योगा भी
0: हम ये
1: करना
0: जानना
1: चाहिए,
0: चाहते हैं।
1: क्योंकि अभी हम लोगों ने मतलब योगा दिवस भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय, तो मैम अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख।
0: लेकिन हम ये जानना चाहते हैं पिंकी जी, कि जैसे आपने कहा कि दही का सेवन करना चाहिए, छाछ मठा वगैरह, तो इसका एक विशेष कोई समय आप बताएंगे कि कब करना चाहिए, या दही का सेवन गर्मियों में कब ज्यादा लाभकारी होता है?
1: मैम जैसे हम सुबह खाना खाते हैं तो उसके साथ ही खाएं, और
0: जी
1: मैम जैसे करके अगर दही छाछ को हम खाते हैं तो मैम ये भी हमारे सेहत मतलब लाभदायक होता है।
0: अच्छा, तो चलिए पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
1: जी,
0: आपने
1: और
0: हमें ये
1: मैम
0: जानकारी दी।
1: गाँव में तो जब चीनी मिक्स करके मतलब जैसे इसका घोल बना के पीते हैं, खाते हैं ना, तो ऐसे में मतलब ज्यादा पसंद करते हैं खाना।
0: जी, चलिए पिंकी जी, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार
1: हाँ दीदी, नमस्ते।
0: जी। बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम और जगह का नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: हाँ दीदी, मैं भागचंद साहू जी बोल रहा हूँ, राजेंद्र नगर गंजवासदा से।
0: जी। साहू जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल।
0: और आज हम जानना चाहते हैं कि खाद्य पदार्थों के सेवन का सही समय क्या है। अब उसमें से कोई भी खाद्य पदार्थ आप चुन सकते हैं कि जिसके बारे में आप
1: हाँ
0: जानकारी दें कि इसका सेवन कब करना चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम, रात।
1: तो दीदी, भी तो देखो खाद्य पदार्थ चीजों में तो देखो बहुत चीजें आती हैं, केला भी है, सेब भी है, ठीक है जी, ऐसी चीजें सभी आती हैं, गेंदा
0: जी। तो हम
1: भी तो
0: जानना चाहते
1: जरूरी है।
0: हैं कि इनका सेवन का समय जो है वो कौन सा समय ज्यादा लाभकारी है।
1: दीदी वो तो देखो समय के अनुसार सब फल आते हैं और समय के अनुसार खाना चाहिए वो,
0: जैसे
1: बिल्कुल समय के बिना, समय के तो खाना बिल्कुल सही नहीं है।
0: जैसे आप बताइए कि कौन सा फल या कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जो बिना समय नहीं खाना चाहिए।
1: दीदी वो तो समय से खाओगे तो सही रहेगा, जैसे अभी आम का मौसम है, आम आ रहे हैं तो आम खा सकते हैं, केला
0: कब खा
1: आ
0: सकते हैं
1: रहा
0: ये
1: है।
0: बताइए, सुबह ज्यादा लाभकारी होता है या दोपहर में या शाम में।

0: सुबह में लाभकारी होता है, केला खाओगे बहुत लाभकारी होता है,
1: और
0: सेब खा लो वो भी लाभकारी है, अंगूर वगैरह भी हाथ बाहर में ले लो सुबह के टाइम,
1: सुबह के समय। जी जी
0: बिल्कुल, ये सब चीजें पौष्टिक आहार है, बहुत
1: पौष्टिक आहार
0: फायदेमंद
1: है
0: चीजें है।
1: और सुबह के समय अगर हम खाते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ये 4 गुना लाभ देता है। ठीक
0: अरे
1: है
0: बिल्कुल, क्यों नहीं देगा दीदी,
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल देगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया साहू जी, आपने हमें फोन किया और ये जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को बताई। नमस्कार।
0: बिल्कुल दीदी, नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: बताइए अपना परिचय, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर से अलीखड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा
0: जी ओम प्रकाश जी स्वागत है, आज कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो बताइए खाद्य पदार्थ के सेवन का सही समय क्या है और आप कौन सा खाद्य पदार्थ चुनकर हमें बताएंगे कि इसे कब खाना चाहिए?
1: देखो मौसमी जो रहते हैं ना, फल सब्जी वगैरह रहती हैं, तो उसका सेवन करना चाहिए
0: जी।
1: और ये खाना में सलाद अलाद वगैरह ये जरूरी है लेना।
0: ये कब लेना चाहिए सलाद, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आप? सुबह लेना चाहिए या नाश्ते के समय लेना चाहिए, लंच के समय लेना चाहिए या शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ आप बताएंगे?
1: सुबह ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो आपका कहना है कि सलाद सुबह खाना चाहिए। और ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिन्हें हमें शाम को खाने से अवॉइड करना चाहिए या सुबह ले लेना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो तो बताइए हमें।
1: शाम के समय क्या है कि एक तो समय का विशेष ध्यान रखें कि समय से पहले ही खाना खा लें। माने ऐसा नहीं कि रात की 10 बजे या 11-12 बजे खा रहे हैं अपन, ये गलत है
0: जी जी।
1: और शाम के समय ऐसी चीजें खाएं जो जल्दी से जल्दी
0: पचने में आसान हो।

0: हेलो
1: जी, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे फोन इन कार्यक्रम है,
0: जरूर रखा गया है इस बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में।
1: जी बिल्कुल, हम आपसे विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहां से बात कर रहे हैं।
0: मैं जिला संगम मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूं।
1: जी हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: विषय जानना चाहते हैं हम।
1: जी विषय हमारा है कि जो हम कई बार केला, संतरा या अंगूर या अन्य कोई ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे दही हो गया और चॉकलेट वगैरह है, आइसक्रीम है, तो इनको हमें कब खाना हमारे सेहत के लिए बेहतर होता है ये बताइए, या इससे अलग और कोई खाद्य पदार्थ जो आप जानते हो तो उसके बारे में बताइए हमें कि कब उसका सेवन सही होता है।
0: ये इन सब चीजों का सेवन तो जब हम ये व्रत उपवास वगैरह रहते हैं और जो है इनको जब अपनी ज्यादा इच्छा हो तो तभी खाना, तो ज्यादा अपने को भूख बांधे रह लेंगे तो।
1: अच्छा, तो अगर हम ये कहे कि हमारा केले खाने का मन रात में बहुत हो रहा है तो क्या खा लेना चाहिए हमें?
0: तो ये इन फलों का उपयोग हम ज्यादा व्रत और उपवास में ही ज्यादा करते हैं।
1: जी जी,
0: और वो जो है,
1: लेकिन समय कौन सा सही रहता है? जैसे केला सुबह ज्यादा लाभदायक होता है, वो आपका वजन बढ़ाता है, तो इस तरह और कोई खाद्य पदार्थ की बात हम आपसे जानना चाहते हैं।
0: हाँ, जैसे
2: हे राजू

0: हूँ तो यहाँ पर खाद पाउडर जो होता है फसल में ज्यादा से ज्यादा सींचा जा रहा है, पूरे भारत में सींचा जा रहा है। मूंग अभी आई है, बीज होता है उसे इसी के माध्यम से उर्वरक शक्तियों के माध्यम से किया जाता है और अंततः उसे एक ऐसे खाद सामग्री सींची जाती है कि वो अंततः वो फसल सूख जाती है और उसे हार्वेस्टर के माध्यम से काट लिया जाता है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक उसमें जहर ही जहर सींचा जाता है। तो हम कहाँ तक सतर्कता बरतें हैं? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सभी लोग सतर्क रहें ताकि हमारा जीवन अच्छे से रहे।
1: जी जी शुक्रिया कमलेश जी, आपने बहुत जानकारी अच्छी दी है कि जो खाए वो शुद्ध खाए, प्योर खाए और अच्छे से अच्छा खाए।
0: और अंत में यही कहूंगा कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा
1: मन। धन्यवाद। कभी

0: हेलो।
1: हाँ जी, ग्राम बालोदा लखा तहसील बाड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश है। कन्हैयालाल प्रजापति।
0: जी कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
1: अब बस बढ़िया, आनंद मंगल है।
0: बढ़िया, आनंद मंगल चल रहा है।
1: हाँ, अभी पानी का इंतजार में बैठे हैं सभी। साथ खेती है हमारे पास, तो
0: हाँ।
1: अगर सोयाबीन लगाएंगे, अगर पानी अच्छा गिर गया तो सोयाबीन लगाएंगे, उसके इंतजार में बैठे हैं।
0: तो ये बताइए कि आप जो ये सोयाबीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे खान पान में किस तरह से असर करती है सोयाबीन?
1: ये तो विटामिन बहुत बढ़िया, इसके अंदर तो इसका तेल वगैरह भी निकलता है और कई तेल
0: तो
1: को।
0: सोयाबीन किस तरह से खाना चाहिए, आप ये बताएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ, सोयाबीन इसको है ना, वो गला करके खाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है कि विटामिन सबसे अधिक इसमें रहता है। क्या
0: अच्छा, और ये कब खाना चाहिए, सुबह को या
1: ये
0: रात में?
1: सुबह में, सुबह में, सुबह में।
0: अच्छा, तो इसे क्या रात में गला कर रखते हैं फिर सुबह खाना चाहिए, या आप 2 घंटे पहले गला दें और खा लें, ऐसा
1: हाँ, दो
0: कोई?
1: दो घंटे, 2-3 घंटे पहले गला करके फिर बाद में खाना शुरू कर दो, और विटामिन एक नंबर रहता है।
0: अच्छा, और उसका पानी वो जो निकलता है गलाने के बाद में, वो पानी किस उपयोग में लाया जा सकता है?
1: हाँ, वो पानी भी ले सकते हो क्या, पीने के लिए भी ले सकते हो, वो भी अच्छा पानी है।
0: चलिए कन्हैयालाल जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि जो अब फसल आने वाली है, तो उसको
1: हाँ
0: लेकर
1: जी,
0: भी जो हमारे श्रोता हैं, तो वो थोड़े से जागरूक हो जाएंगे कि सोयाबीन हमारे लिए फायदेकारक है और उससे विटामिन मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैयालाल जी, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से और सुनते रहिए कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, और इसके साथ ही और दूसरे कार्यक्रम भी।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: बिल्कुल, स्वागत है आपका। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे।
0: हाँ जी मैडम
1: जी, नमस्कार। बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना नाम?
0: मंदसौर से बोल रहा हूँ, मनोहर लाल मेहर।
1: जी स्वागत है मनोहर लाल जी, कैसे हो आप?
0: बढ़िया हूँ मैम।
1: बढ़िया है। बारिश की क्या तैयारियाँ चल रही है आपके यहाँ?
0: बारिश तो अभी हुई नहीं है, बारिश की संभावना है, पर गर्मी बहुत पड़ रही है।
1: गर्मी हो रही है और संभावना है, तो बारिश में ये बताइए कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जहाँ हमें उसे सुबह खाना चाहिए या रात में खाना चाहिए, दिन में, ऐसी कौन सी जानकारी है आपके पास?
0: अभी तो हल्का फुल्का भोजन लेना चाहिए, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है। सभी साथियों से ये कहना चाहूंगा कि हल्का फुल्का भोजन ले, ये तेल की जो बाजार की जो चीजें हैं ये खाना बंद कर दे, और अपने जो घर पे जो जैसे कोई दलिया बनाओ, जैसे हल्की फुल्की कोई चीजें बनाओ तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: लेकिन ये है कि दलिया तो हम शाम को खाए ताकि पाचन भी आसान हो और हल्का फुल्का भी रहता है, लेकिन
0: हाँ, और सवेरे टाइम क्या है कि वो मूंग की दाल बना लो और रोटी, सादी रोटी खाओ
1: हर रोज।
0: हर रोज थोड़ी मैम।
1: हाँ, तो जैसे आपने बताया कि मूंग की दाल, तो हमारे अभी एक पहले कॉलर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मूंग किस तरह से फसल में उगाए जाते हैं और उसका किस तरह से फर्टिलाइज करके और हम तक पहुंचता है। तो ये जो मूंग की दाल होती है, या इसके अलावा और कौन सी पौष्टिक चीजें होती है जो जिसकी जानकारी आप हमें देना चाहते हो?
0: पालक वगैरह, मेथी की सब्जी, ये ऐसे कुछ सब्जी ऐसी है जो लौकी की सब्जी है, तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहती है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझो और समझो।

0: श्रोताओं, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमने जानना चाहा कि किसी भी वस्तु के सेवन का सही समय क्या होना चाहिए। शोध के अनुसार अक्सर ये होता है कि बच्चे जब चॉकलेट मांगते हैं हम उन्हें कभी भी दे देते हैं, लेकिन रात में चॉकलेट खाना इसमें कैफीन बहुत होता है जिसके कारण वो नुकसान करता है। सोने से पहले टमाटर खाना ये भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। संतरा और अन्य खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, लेकिन पूरी तरह खाली पेट इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान का आज से 30 जून तक समापन किया जा रहा है। 19 मार्च को शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपये की लागत से 3,62,000 से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर 27 जून को सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट राजधानी भोपाल में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल से प्रदेश सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 33,92,000 से अधिक भाई बहनों और बुजुर्गजनों के बैंक खातों में मई माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का अंतरण कर रहे हैं। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों में लिखकर भेजते हैं। सुनिए गीत हेमलता के स्वर में। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमा

फरमाइश हमें आई है बेलई जिला सागर से। श्रोता है लक्ष्मण रायकवार, श्रीमती विनीता रायकवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत रायकवार और ऋषि रायकवार। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को सुरों से सजाया लता मंगेशकर और मुकेश ने, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है राहुल नगर यवतमाल से। श्रोता हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी। अगले श्रोता राजावत परिवार हैं, मध्य प्रदेश थे। मनमोहन रजावत, मधु रजावत, राशि, रशिद, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत और ऋषभ। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कवर कॉलोनी बड़वाह से। श्रोता हैं प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज शिमाली। अगले श्रोता भाटापारा दत्तरिंगी छत्तीसगढ़ से हैं। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जुबेदा से। इस गीत को सुरों से सजाया कविता कृष्णमूर्ति ने, गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार A.R. रहमान। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है औरंगाबाद से। श्रोता हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि। अगले श्रोता रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार है शिवहरी। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से। श्रोता है कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुश्तबा, आफिया, रऊफ और शाहिद। अगले श्रोता गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। और श्रोता है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

0: लगता है, चने की इल्ली लग रही है, कटुआ इल्ली लग रही है, तो उसके लिए आपको
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ti je sena.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का सातवां भाग।

0: धारावाहिक में अब तक आपने जाना, राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा ध्युम्सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ आया, जहां की राजा आदित्य सेन ने भुवन मोहिनी को आश्रय दिया था। भुवन मोहिनी ने जब देखा कि उसके आश्रयदाता की बेटी राजकुमारी चंद्रहासिनी राजकुमार के प्रति आसक्त है, तो वो अपने प्रेम का बलिदान करने को तत्पर हो गई। उसने चंद्रहासिनी को विश्वास दिलाया कि वो उसका विवाह राजकुमार से अवश्य करवाएगी। राजकुमार ने संदेशवाहक से भुवन मोहिनी को अपने आवास पर बुलवाया, परंतु हट करके राजकुमारी चंद्रहासिनी भी आ गई। भुवन मोहिनी ने राजकुमार से चंद्रहासिनी को अपनाने का आग्रह किया, परंतु विजय श्रवा ने साफ साफ कह दिया कि भुवन मोहिनी का जो स्थान उसके हृदय में है उसे कोई नहीं ले सकता। इसके बावजूद भी चंद्रहासिनी ने इस सच को स्वीकार कर लिया। तीनों ने मिलकर मेले का भ्रमण किया, जहां राजकुमार के माता पिता मिले। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। अब आगे क्या होता है ये सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी में।
1: सम्राट दुमत सेन की जय। सम्राट दुमत सेन की जय। सम्राट दुमत सेन की जय।
2: समस्त खंड राज्यों के राजा महाराजाओं को भारत सम्राट द्युमत सेन का यथा योग्य अभिवादन। इंद्रप्रस्थ मेले के इस पुनीत अवसर पर हम सब अति गंभीर प्रश्न पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और ये प्रश्न है भारत पर ह्यूणों का आसन्न आक्रमण। हम देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर हूण जाति के बाहरी लोग लगातार छुटपुट आक्रमण कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि हूण बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और हमारी पुण्य पावन धरती को छीनना चाहते हैं। इस हेतु आप सबकी अंत इच्छा को हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
3: हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए।
2: हमारी भी यही इच्छा है, पर आप लोग जानते हैं कि हमारी आयु अब बहुत हो चली है। ऐसी स्थिति में क्या आप सब खंड राज्य के अधिपतिगण इस सभा में उपस्थित हमारे युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व को स्वीकार करने की सहमति देते हैं?
4: इसके पहले कि आप सब किसी निर्णय पर पहुंचें, मैं इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन युवराज विजय श्रवा के विषय में आप सबको कुछ जानकारी देना चाहता हूं।
3: अवश्य अवश्य अवश्य,
4: क्योंकि आप में से कई नरेशों ने युवराज विजय श्रवा की वीरता के बारे में नहीं सुना होगा। क्या आपकी अनुमति है?
3: अनुमति है, अनुमति है।
4: माननीय सभासदों, कुमार विजय श्रवा ने अतीत में हुए मगध और सूत प्रदेशों की लड़ाइयों में अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। उन्होंने जिस चतुराई से इन युद्धों का संचालन किया था, वैसा भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया। युद्ध में किस तरह साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाकर शत्रु को चारों खाने चित करना चाहिए, युवराज को भली भांति जानकारी है। उन्होंने यह कला किसी और से नहीं, अपने यशस्वी पिता सम्राट दुमत सेन से ही सीखी है। युवराज विजय श्रवा ने मगध के युद्ध में जिस प्रकार मोर्चेबंदी की, वह अविस्मरणीय है। विपक्षी सेना को पता चला कि युवराज विजय श्रवा की सेना घबरा गई है और पीछे हट रही है, तो वो पीछा करने में लग गई। जैसे ही युवराज ने देखा इस पीछा करने की कार्यवाही में शत्रु सेना छिन्न भिन्न हो गई है, तो उन्होंने अपने सुनियोजित एक ही प्रबल आक्रमण से शत्रु सेना को चारों ओर से घेर लिया और बंदी बना लिया। मित्रों, हमें हूणों के साथ ऐसी ही बुद्धिमत्तापूर्ण युद्ध की नीति अपनानी होगी। मत भूलिए कि हूण अत्यंत ही बर्बर और आक्रामक जाति है, जिसका इस धरती पर प्रवेश मात्र हमारी दासता को आमंत्रण नहीं होगा, अभी तो हमारी संस्कृति का सर्वनाश होगा। अब निर्णय आपके हाथ में है।
3: हमें युवराज विजय सभा का ही नेतृत्व चाहिए। हाँ हाँ हाँ।
2: तो अब हम यही निर्णय मानते हैं कि युवराज विजय श्रवा के नेतृत्व में समस्त खंड राज्यों की सेनाएं हूणों से युद्ध के लिए तैयार की जाएं। युवराज का क्या कहना है?
5: सभी महामहिम नरेशों का मैं अभिवादन करता हूं। आप लोगों की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं भावी युद्ध आप सब वयोवृद्धों के आशीर्वाद और आदेशों से लड़ूंगा। हमें राष्ट्र के युवकों में वीरता की ज्योति जगानी पड़ेगी। उनके भालों को लोहित टीकों द्वारा सुसज्जित कर रणभूमि में भेजना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी सेना के साहस और शौर्य को बहुगुणित करते हुए शत्रुदल को शीघ्र ही पराजित कर भारत की विजय पताका फहराऊंगा। कृपया मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।
6: कितनी अद्भुत बात है।
7: कौन सी बात?
6: जिस विजय श्रवा को हम अकर्मण्य और विलासी समझते थे, उसने तो युवाओं में उत्साह भर दिया।
8: राजमाता, आज राजकुमार जी ने राष्ट्र में नए प्राणों का संचार कर दिया।
9: अरे ये सब मेरी भावी पुत्रवधु चंद्रहासिनी के सौभाग्य का परिणाम है। मेरे पुत्र के जीवन में चंद्रहासिनी का प्रवेश जैसे ही हुआ, वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भी समझने लगा। क्यों चंद्रहासिनी?
8: ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इस योग्य मान रही हैं।
5: आपने मुझे बुलाया माँ।
9: आओ पुत्र, पुत्र हमें तुम पर गर्व है।
5: माँ, एक दिन आपको आशंका हुई थी कि कहीं मैं विलासी बनकर स्वाभिमानिनी माता का दूध कलंकित न करूं। उसी क्षण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपकी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करके रहूंगा। इसीलिए माँ, उसी समय मैंने ये भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा।
9: पुत्र?
5: हाँ माँ, ये मेरा स्पष्ट निर्णय है।
9: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाल। अपनी इस वृद्धा माता की भूल को क्षमा करो। मैं जानती हूं कि मैंने अपने ही हृदय के टुकड़े को कठोर और अपराध युक्त वाकवाणों से पींद कर उसका बहुत अपमान और तिरस्कार किया था, किंतु तुम्हारी निश्चल तपस्वी मूर्ति को देखकर मेरा हृदय स्वयं अपने कहे वाकवाणों के लिए पश्चाताप कर रहा है। इसके अतिरिक्त मात्र सेवी पुत्र को जो निरर्थक कष्ट सहना पड़ा, वो भी मेरे मातृत्व के विपरीत कार्य हुआ है। इन समस्त त्रुटियों को करते हुए भी चंद्रहासिनी को मैंने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कर लिया है। पुत्र,

0: महारानी कुमुद वल्लभा को मैंने और महाराज आदित्य सेन को सम्राट ने वचन दान भी कर डाला है। क्या मातृ पितृ सेवी पुत्र से अवज्ञा की आशा की जा सकती है? क्या सम्राट और मेरे वचनों का कोई मूल्य नहीं है मेरे पुत्र? क्या विवाह की स्वीकृति देने का अधिकार कभी भी तुमसे छीना था हमने? यदि नहीं तो आज की राजपुत्रियों में चंद्रहासिनी ही सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी है, जो अक्षय यौवना, अनिंद्य सुंदरी, पारंगत विदुषी और विनयपूर्ण आज्ञाकारिणी है। उसका समग्र जीवन चरित्र और सौंदर्य निष्कलंक है। फिर भला ऐसी राजपुत्री को अपनी पुत्रवधू बनाने का लोभ मैं कैसे संवरण करूं? तुम ही बताओ।
1: मां, मैं अपनी ओर से जो कुछ चंद्रहासिनी को दे सकता था भुवन मोहिनी को साक्षी बनाकर दे दिया है। इससे अधिक आज मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि मैं विवाह आदि के बंधनों में जितना ही उलझूंगा, राष्ट्र रक्षा का प्रश्न उतना ही जटिल होता जाएगा। इसलिए मां, महान दायित्वों के सामने एक व्यक्ति के विवाह का मंगल कार्य तुच्छ है, चाहे साम्राज्य का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो। आप जानती हैं मां, अनासक्ति की तुलना में सर्वदा आसक्ति ही पराजित हुई है। फिर भी आप ये सब कह रही हैं? एक ओर मैं राष्ट्र की सेवा को तत्पर हो रहा हूं और दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रहासिनी से विमुख भी हो रहा हूं। समग्रता में क्या उचित है क्या अनुचित नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि कल तक मैं शून्य जीवन व्यतीत कर रहा था, अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु आज तो मैं स्वयं के होने का भावार्थ समझ गया हूं। आज मेरे लिए जीवन का एक भी क्षण मूल्यहीन नहीं है, वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। मेरे माता पिता ने मेरी उपेक्षा की, सुनसान पहाड़ियों में, जंगलों में निरुद्देश भटकता रहा मैं, परंतु अब उन्हीं माता पिता के हृदय से स्नेह, सौभाग्य और आशीर्वाद की त्रिवेणी निकल रही है मेरे लिए। मुझे जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। अरण्यक?
2: हाँ मित्र।
1: धारा नगरी को प्रस्थान करने की तैयारी करो, और हां, किसी भृत्य को कहो कि शीघ्र जाकर भुवन मोहिनी को मेरा संदेश सुनाए कि वो भी मेरे ही साथ मेरे रथ में बैठकर मातृभूमि की यात्रा करने की शुभ आयोजना में संलग्न हो। उसके भृत्य और वैयक्तिक संपत्ति आदि जो भी हो वो अपने रथ में लेकर शीघ्र ही पर्णकुटी में आ जाए, और हां, उससे निश्चित रूप से स्मरण करा दिया जाए कि एक दिन उसके निर्वासन की घड़ी में मैंने प्रतिज्ञा ठानी थी कि उसे बुलाने के लिए मैं ही अपना रथ लेकर आऊंगा। वो बेला आज उपस्थित है।
2: जो आज्ञा युवराज, मैं अभी जाता हूं।
0: क्या सोच रही है हमारी भावी पुत्रवधू?
3: राजकुमार ने भुवन मोहिनी को बुलवाया है।
0: अच्छा,
3: अपने साथ धारा नगरी ले जाने के लिए वो तैयारी भी कर रही है।
0: कोई बात नहीं पुत्री, इसमें तुम परेशान ना हो, मैं अपने पुत्र को अच्छी तरह जानती हूँ।
3: माँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी जाऊं।
0: तुम्हारी भी इच्छा है, परंतु पुत्री हम लोग तो धारा नगरी बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी हमें सम्राट के साथ संपूर्ण देश की परिक्रमा करनी है। तब तक तुम अकेली प्रासाद में कैसे रुकोगी? देखो पुत्री, कुछ दिन और धैर्य रखो, उसके बाद शीघ्र ही तुम हमारी पुत्रवधू बनकर राज प्रासाद की स्वामिनी बनोगी। फिर भी यदि हमारे युवराज तुम्हें अतिथि के रूप में अपने साथ ले जा सके तो मुझे

0: भी नहीं। हाँ, अपने माता पिता की आज्ञा अवश्य ले लेना।
1: धन्यवाद माँ, मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दे दी, परंतु अब मुझे फिर से भुवन मोहिनी की शरण जाना पड़ेगा। ये जानती हुई भी कि वो मेरे प्रिय के अंतर मन में देवी की भांति स्थापित है। ठीक है, जाती हूँ भुवन मोहिनी के पास।
2: अरे राजकुमारी जी, आइए, बस मेरा सामान रथ पर रखा ही जा चुका है। राजकुमारी, मेरे गले लगिए, मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी आपके पिता महाराज की, उन्होंने मुझे आश्रय दिया था। अरे आप अनमनी मत होइए, मैं जब तक आपको राजकुमार के हृदय का हार नहीं बनवा दूंगी शांत न होंगी। राजकुमार आपको अवश्य स्वीकार करेंगे।
1: सखी, हृदय में जिस प्रेमाग्नि की लपटें धधक उठी हैं, वे क्षणिक वियोग की अश्रुधाराओं से बुझने ना पाए, बस यही तुमसे प्रार्थना है। न जाने क्यों आज ऐसा लगता है कि राजकुमार के ओझल होते ही मेरे जीवन की समग्र प्रसन्नता लुट जाने वाली है। मेरे नेत्र आंसुओं को नहीं संभाल सकते, मैं असहाय अपने जीवन को बचा ना सकूंगी। बताओ बताओ सखी, मैं क्या करूं जिससे वो मेरी दृष्टि से ओझल ना हो।
2: राजकुमारी जी, संयोग वियोग मानव जीवन का अटल धर्म है, इसे सहन करना ही पड़ेगा, चाहे हंसकर सहन करो या रोकर। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय और संयोग वियोग का सम्मिश्रण ही तो मानव जीवन का लेखा जोखा है।
1: सखी, मैं मानव जीवन की परिभाषा नहीं जानती, न यही जान सकी हूँ कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है और ये जीवन में क्यों प्राप्त हुआ।
2: किंतु इसे तो जानना पड़ेगा राजकुमारी।
1: अवश्य प्रयास करूंगी, किंतु मात्र राजकुमार विजय स्रवा के माध्यम से। अकेली न मैं कुछ कर सकती हूँ न समझ सकती हूँ। विजय स्रवा के बिना मैं उस सरिता का शून्य अंक या गर्व ही बनी रहूंगी जिसका गंभीर और जीवनप्रद सरस रस पूर्णत्व की स्थिति के पूर्व ही सूख चुका है और जो शून्य से अधिक कुछ भी नहीं।
2: राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ धारानगरी चल सकेंगी? युवराज से मैं आज्ञा ले लूंगी इसके लिए, निश्चिंत रहिए।
1: धन्यवाद सखी, तो मैं भी अपनी तैयारी कर लेती हूँ।
2: हाँ हाँ।

0: सारथी, राजकुमार के वापस लौटने की सूचना पाकर न जाने कितनी भीड़ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची है। भुवन मोहिनी भी कब की आ चुकी हैं, परंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिल रहा है।
1: अरे भुवन मोहिनी नहीं, राजकुमारी भी आई हैं।
0: क्या कहते हो?
1: मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा।
0: नहीं, मैं भी जाकर युवराज को बताता हूं।
1: हाँ, जाओ।
0: मित्र, मित्र, मित्र,
2: क्या है अरण्यक?
0: देव, भुवन मोहिनी पर्ण कुटी में आ चुकी हैं, किंतु उनके साथ साथ राजकुमारी चंद्रहासिनी भी पधारी हैं।
2: अरे तो ऐसा करो कि तुम उन दोनों की सेवा में प्रस्तुत रहो, और जैसे ही अवकाश मिलेगा मैं उन लोगों के बीच आ जाऊंगा और हम सब एक साथ भोजन करेंगे।
0: बहुत अच्छा मित्र, अभी जाता हूं।
2: बस बस, देखिए अब अधिक समय मैं नहीं दे पाऊंगा, यात्रा में विलंब होगा। आप सब जोश बनाए रखिए और आगामी युद्ध की तैयारी करिए।
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की
4: जय!
3: युवराज विजय शर्मा की जय!
2: भुवन मोहिनी, आज की घड़ी कितनी शुभ है। आज हमारे स्वतंत्र पुनर्मिलन का अति मूल्यवान क्षण उपस्थित हुआ है, और संयोग से उसमें भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रहासिनी भी उपस्थित हैं। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पुरस्कृत करूं।
5: देव चिरायु हो, मेरे समस्त सुख वैभव के क्षण तभी उपस्थित हो जाते हैं जब देव के पावन दर्शन में मुझ जैसी नारी के तुच्छ जीवन क्षण व्यतीत होते हैं। फिर भी देव के श्रीमुख से पुरस्कृत किए जाने का विशेष आदर पाकर मैं कृतार्थ हूं।
2: आज तो राजकुमारी का नाम सार्थक ज्ञात होता है।
6: हाय, बलिहारी जाओ राजकुमार, कम से कम इतना तो कहा।
2: ओ रूप की जादूकरनी, अनमोल मोल का सौदा करके तुमने मुझे प्रेम की एकांत साधना से विचलित कर दिया है। मेरी पलकों में नाचकर तुमने अंतर के प्रेम रहस्य को पहचान लिया है। तुम बरजोरी से वहां प्रवेश कर चुकी हो जहां भुवन मोहिनी चिरकाल से प्रतिष्ठित रहती आई है। तुमने एक अपराजिता सौंदर्यमयी नारी को भी अपने मायावी रूप के बंधन में जकड़कर उसके रूपोन्मोहन से स्खलित कर दिया है। तुम्हारे ये विशाल नेत्र अपनी पलकों में रूप की मदिरा उड़ेल कर मुझे मद विह्वल करते जा रहे हैं। मैं इनका जितना ही चक्षुपान करता हूं, मेरी प्यास उतनी ही बढ़ती जा रही है।
5: देव, मेरा पुरस्कार मुझे मिलेगा?
2: हाँ, तुम मांगो तो।
5: एक बार आप और सोच लें, मैं जो कुछ मांगूंगी वो आपको देना ही होगा।
2: बस वो वस्तु मेरे प्राण से अधिक मूल्यवान न हो। मैं अगणित भुवन मोहनियों और चंद्रहासिनियों को अकेला प्यार करूंगा। चिर अद्वैत आज द्वैत की भावना से मूर्तिमान है। प्रेम वासना का प्रतिनिधि है।
5: मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अनंग का रंग तपस्वी विजय श्रवा की पवित्र नाड़ियों में मोहित मूर्छना का विष घोलता जा रहा है।
2: देर मत करो प्रिय, आज मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी देकर अपने दानी होने का परिचय दूंगा। तुमने देर की है, एक के स्थान पर दो पुरस्कार मांगो।
5: देव, दूसरा पुरस्कार तो भविष्य के लिए सुरक्षित रखती हूँ, परंतु पहला पुरस्कार यही मांग रही हूँ कि राजकुमारी चंद्रहासिनी हम लोगों से क्षण भर के लिए भी विलग ना हो।
2: क्या? मैंने वचन दिया, परंतु ध्यान रहे, यदि भविष्य में विजयश्रवा तुमसे दूर होता दिखाई पड़े तो उस स्थिति में संपूर्ण दोष का दायित्व तुम्हारा होगा। जानती हो ना, मानव जीवन पतन का भी इतिहास रहा है।
5: राजकुमारी, मैंने अपनी प्रियतम सौगात आपको अर्पित कर दी है। हो सके तो इस सागर से बिंदु मात्र मुझे प्रदान कर अपनी उदारता का परिचय देना, किंतु वो कभी बदला चुकाने की दृष्टि से ना हो। राजकुमारी, आपने मुझसे जब जो कुछ चाहा है वो सब मैंने आपको अर्पित किया है। अब आप मेरी छोटी बहन बनी है ना? किंतु हमारा ये संबंध बहुत एकांत का है। समाज और संसार की दृष्टि में आप एक महामहिमामयी और मैं मात्र एक तुच्छ नारी हूं।
6: बहन, कृतज्ञता ज्ञापन के लिए मेरी वाणी में शब्द नहीं है। तुमने बारंबार मेरे जीवन को आत्म प्रवंचना और आत्म प्रताड़ना के गर्त से ऊपर उठाकर सुख शांति और समृद्धि के स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया है। दीव स्वयं साक्षी हैं। तुम अपने महान दैवी संपत्ति द्वारा अपने जीवन को सजाकर एक अशुभ नारी से अब देवी बन चुकी हो। मैं तो शक्ति अहंकार अहमन्यता और सत्ता की गोद में पलकर साधारण मानवी हूँ, भले ही मेरा वाह स्वरूप महानता का परिचायक हो।
5: मेरी बहन,
2: ये नारी जिसने अपना अंतर और वाह मेरे लिए बिखेर रखा है, मैं उसे कब से समेट कर अपने आप में छिपा लेना चाहता रहा हूं, किंतु मैं उसका बिखरना रोक नहीं पाता। मैं उसे अपने आप में समेट नहीं पाता।
5: देखा राजकुमार, मेरी छोटी बहन की महानता को? स्वयं इतनी विशाल हृदय होकर मेरा गुणगान करने चली है।
2: भुवन मोहिनी, मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं सका। जब भी मैं अपनी समझ की परिधि में तुम्हें घेर लेता हूं, तभी मुझे ज्ञात होता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व का ना जाने कितना भाग अभी भी मैं स्पर्श नहीं कर सका। समझ की परिधि के भीतर लाना तो दूर की बात है।
5: ये भी देव की ही कला है। मुझे आदर देकर वो राजकुमारी को ही प्यार जता रहे हैं। अच्छा, अब देव का आदेश हो तो अरण्यक सबको भोजन कराएं।
2: अवश्य प्रिय, भोजनादि करके सब लोग शीघ्र ही सो जाएं और कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में धारा नगरी को निकल पड़ें।

0: संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश भर में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में 30 जून तक जलगंगा वर्धन अभियान चलाया जा रहा है। 19 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के दौरान लगभग 10,514 करोड़ रुपए की लागत से 3.62 लाख से अधिक कार्यों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। वेनेजुएला में आज 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कारागास और आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में मानसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला मैनचेस्टर में 7:00 PM से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली श्रोता बहनों को एक साथ तय समय पर रेडियो सेट के करीब लाने की जिम्मेदारी आज है हमारी। तो बहनों, आप सबको आपकी अपनी सखी सुधा मिश्रा का नमस्कार। हम आपको बता दें बहनों कि हर वर्ष 25 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। बहनों, यह दिवस उन लाखों नाविकों और समुद्री कर्मियों को समर्पित है जो समुद्र की अथाह गहराइयों और कठिन परिस्थितियों के बीच

बने रहकर वैश्विक व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि अगर नाविकों के पहिए थम जाएं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था की गति भी प्रभावित हो सकती है। बहनों, विषय कुछ ऐसा है कि हमारे और आपके लिए रोज़मर्रा से थोड़ा अलग हटकर है, लेकिन इन अनदेखे नायकों को जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि बहनों आज भी पूरी दुनिया का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे में नाविकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। समुद्र में कई कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहकर काम करना, मौसम अपने विपरीत भी हो तो भी काम करना, तूफानों और अनेक चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होता। फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण और अदम्य साहस के बल पर ये नाविक विश्व के देशों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। भारत जैसे विशाल समुद्री तट वाले देश के लिए भी नाविकों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय समुद्री कर्मियों ने अपनी दक्षता और प्रतिबद्धता से विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज विश्व के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन समुद्री मार्ग से होता है। भोजन, दवाइयाँ, ईंधन, मशीनें और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कई वस्तुएं समुद्री जहाज़ों के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश तक पहुँचती हैं। इस दृष्टि से नाविक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन को सहज और सुचारू बनाने में अनेक ऐसे लोग भी योगदान देते हैं जो प्रायः हमारी नज़रों से दूर होते हैं। इसलिए आज का दिन उन अनदेखे नायकों को धन्यवाद देने और उनके योगदान का सम्मान करने का दिन है। और चलिए कुछ ऐसे ही भावों से ओतप्रोत हम सुनवाते हैं आपको यह खूबसूरत सा

0: और बहनों, अब हम आपको लिए चलते हैं आज की अपनी भेंटवार्ता की तरफ। हमारी भेंटवार्ता का विषय है मधुमेह, हृदय रोग और योग। योगाचार्य अवनीश तिवारी जी से बातचीत की है डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने।
1: श्रोताओ, योग के क्षेत्र में योगाचार्य अवनीश तिवारी जी का नाम आज बहुत ही जाना पहचाना है। तिवारी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वागत है आपका हमारे श्रोताओं के बीच में।
2: नमस्कार।
1: और आज का हमने विषय जो निर्धारित किया है वो है मधुमेह, हृदय रोग और योग। तिवारी जी, मधुमेह एक ऐसा रोग है या कहें कि शरीर का एक ऐसा लक्षण है जो अगर आ जाता है तो बहुत परेशान करता है
2: जी,
1: और फिर वो छूटता भी नहीं है
2: जी,
1: एक लंबे समय तक छूटता भी नहीं है। कहीं योग का सहारा लेता है व्यक्ति, कहीं आयुर्वेदिक दवाइयों का, कहीं होम्योपैथी दवाइयों का, कहीं एलोपैथी दवाइयों का, जिसको जो समझ में आता है उसका वो सहारा लेके उसको नियंत्रित करने के लिए परेशान रहता है, भाग दौड़ भी करता है शरीर को एडजस्ट करने के लिए। आज का हमारा विषय इसीलिए मधुमेह, हृदय रोग और योग। ये मधुमेह और हृदय रोग दोनों जुड़े हुए हैं
2: जी।
1: आज हम आपसे योग के माध्यम से बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे
2: जी,
1: कि योग क्या कहता है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वो विधि बताएं हमारे श्रोताओं को कि मधुमेह के चपेट में हम आए तो उससे पहले बचाव के उपाय क्यों नहीं।
2: बहुत सही कहा आपने। देखिए, योग एक जीवन की शैली है, एक लाइफस्टाइल है
1: जी।
2: उस लाइफस्टाइल के माध्यम से आज मधुमेह जो है महामारी बनती चली जा रही है
1: जी।
2: हृदय रोग भी उसका एक पार्ट है
1: जी,
2: उससे अपग्रेड होंगे तो हृदय रोग है
1: जी।
2: तो मधुमेह के तीन दुश्मन हैं
1: जी।
2: पहला दुश्मन आपका है मस्तिष्क
1: जी।
2: यदि मधुमेह आपका बढ़ रहा है तो कभी भी ब्रेन हेमरेज आपको हो सकता है
1: जी,
2: इनफॉग ब्रेन में हो सकता है
1: जी।
2: दूसरा उसका दुश्मन है हार्ट
1: जी,
2: मायोकार्ड इनफॉग आपको हो सकता है
1: जी,
2: कोरोनरी ब्लॉक आपके हो सकती हैं
1: जी,
2: नेफ्रॉन्स किडनी के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं
1: जी।
2: इसके तीन दुश्मन हैं
1: जी,
2: और ये तीन दुश्मन आपको पूरा जीवन चौपट कर देंगे
1: जी।
2: इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है
1: जी,
2: हमारे जीवन जीने की शैली
1: जी।
2: मानसिक तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं
1: जी,
2: जीवन स्तर में विकटता पैदा होती चली जा रही है
1: जी।
2: साथ ही हम भागम भाग की दौड़ में अपने आप खोते चले जा रहे हैं अपने आप को
1: जी।
2: तो पहली बात यह है कि योग हमको जीना सिखाता है
1: जी।
2: हमें क्या खाना है
1: जी,
2: कितना खाना है
1: जी,
2: कैसे खाना है
1: जी,
2: कैसे चल रहा है, कितनी एक्सरसाइजेस देना है
1: जी,
2: अपने ऑर्गन को कितना अच्छा बनाना है
1: जी,
2: ये हमको योग सिखाता है
1: जी।
2: योग एक टेक्निक
1: जी,
2: है
1: जी।
2: उस टेक्निक के माध्यम से हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, मानसिक तनाव
1: जी,
2: बहुत सी प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं आप
1: जी।
2: दुनिया में एलोपैथी यदि आपकी बात करते हैं तो केवल एलोपैथी में कंट्रोल है
1: जी,
2: क्योर नहीं है
1: जी।
2: मधुमेह का ट्रीटमेंट
1: जी
2: नहीं है
1: जी,
2: केवल कंट्रोल है
1: जी।
2: हार्ट डिजीज केवल दवाइयां खा सकते हैं आप
1: जी,
2: उसका क्योर नहीं है
1: जी।
2: रक्तचाप का क्योर नहीं है
1: जी,
2: क्योंकि सारी बीमारियां लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती हैं
1: जी,
2: आपके जीवन शैली कैसी है
1: जी।
2: यदि हमने जीवन शैली में आमूल परिवर्तन कर

0: या तो हम इन बीमारियों को खत्म कर सकते हैं।
1: हम चाहते हैं कि वो
0: पहली
1: जीवन
0: बात
1: शैली
0: जी,
1: हमारे श्रोताओं को आप बताएं
0: जी,
1: जिससे एक स्वस्थ जीवन जिया जा सके।
0: बहुत बढ़िया। देखिए, पहली बात यह कि हमें अपने परमात्मा ने 24 घंटे आपको दिए हुए हैं
1: जी।
0: 24 घंटे में से हम एक सवा घंटे अपने आप को दें, बाकी 23 घंटे दुनिया को बांटते हैं।
1: क्या बात है।
0: वह अपने आप का एक कैप्सूल तैयार करिए आप
1: जी,
0: कि मुझे इतने आसन करना है, इतने प्राणायाम करना है, इतनी एक्सरसाइजेस करना है, इतना पसीना मुझे बहाना है
1: जी।
0: वर्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइजेस हैं
1: जी,
0: है ना, फ्लोर एक्सरसाइजेस कहलाती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज उसमें होती हैं
1: जी।
0: यदि योग नहीं बनता तो आप दंडवत कर कुछ भी कर लीजिए आप
1: जी,
0: लेकिन आपको घंटे अपने आप को देना है।
1: क्या बात है।
0: उस एक घंटे के माध्यम से जो स्वेटिंग आपको होगी, जो ज्वाइंट्स आपके खुलेंगे, जो पेट आपका साफ होगा, उससे आपकी पूरी टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे।
1: क्या बात।
0: और मानसिक तनाव में कमी आपको आएगी। देखिए, डायबिटीज का सिर्फ एकमात्र कारण है, वह है हाइपर। जितना मानसिक तनाव आपका, हाइपर स्ट्रेस आपका बढ़ेगा
1: जी,
0: तो शुगर लेवल आपका एबनॉर्मल कभी हो सकता है
1: जी।
0: तो मानसिक तनाव को जितना आप कम करेंगे
1: जी,
0: उतना ज्यादा शुगर लेवल आपका बैलेंस होगा
1: जी।
0: इसका दोषी जीन्स भी है, ऐसी बात नहीं है, जेनेटिक भी है ये
1: जी,
0: है ना। यदि पिताजी को है तो आपको आने की संभावना है
1: जी,
0: माँ को है तो आपको आने की संभावना है
1: जी,
0: दादा को है तब भी आपको आ सकती है
1: जी।
0: ये जीन्स डिजीज भी कहलाती है ये
1: जी,
0: लेकिन उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं
1: जी।
0: देखिए, जितने भी हमारे ऑर्गन हैं
1: जी,
0: उन ऑर्गन ये बहुत ही सेंसिटिव हैं
1: जी।
0: मानव का मस्तिष्क
1: जी
0: और उसके ऑर्गन बहुत ही सेंसिटिव हैं, जो मैसेज उसमें डालोगे उसको फॉलो करते हैं। जो हार्ट को कहोगे, हार्ट उस बात को मानता है
1: जी,
0: ब्रेन उस बात को मानता है
1: जी,
0: पैनक्रियास उस बात को मानती है, पैनक्रियास उस बात को मानती है। तो जितना जो मैसेज कन्वे आप करोगे उसको, उस मैसेज को फॉलो करते हैं, उसी के माध्यम से आपकी डिजीज डिसाइड होती है
1: जी। जी,
0: तो पहली बात, लाइफस्टाइल डिजीज को खत्म खत्म करने के लिए
1: जी,
0: अपने को हम लोग शैली जीवन शैली, पहली बात नियमितता जीवन में
1: जी,
0: जितना नियमित आप होंगे अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे आप। पहली
1: जी,
0: बात नियमित समय पर उठना
1: जी,
0: एक्सरसाइजेस करना
1: जी,
0: सुबह उठते साथ ही कम से कम आपको 2 ग्लास पानी पीना
1: जी,
0: पेट साफ करने के लिए
1: जी।
0: जितना कचरा पेट का आपका साफ होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा
1: जी।
0: 2 ग्लास पानी में कुनकुना पानी करिए, उसमें नींबू डालिए आप
1: जी।
0: नींबू डालने के बाद आपका पेट बढ़िया साफ आपका होगा।
1: बहुत बढ़िया,
0: है ना। दूसरी बात क्या है, रोज एक लहसुन खाइए
1: जी।
0: लहसुन रक्तचाप को सामान्य करता है।
1: कच्चा
0: कच्चा लहसुन खाइए, उसको कुटक जाइए आप
1: जी,
0: और पानी ऊपर से पानी पी लीजिए आप
1: जी।
0: तो पहली बात क्या है कि पेट की तमाम गैस कचरा बाहर निकल जाएगा आपको, उसको चबाओगे तो हो सकता है आपका एसिड बन जाए
1: जी,
0: लेकिन उसको गुटकना है आधी लहसुन, एक लहसुन
1: जी।
0: उसके बाद आप फ्रेश होने जाइए
1: जी,
0: है ना, पेट आपका बढ़िया साफ होगा
1: जी।
0: सुबह नाश्ते में आपके स्प्राउटेड बीन्स
1: जी,
0: अंकुर दाने
1: जी,
0: विटामिन बी का भंडार है
1: जी,
0: अंकुर दाने आपको रोज खाना है
1: जी।
0: कभी टमाटर खाना है
1: जी,
0: कभी चुकंदर खाना है
1: जी,
0: कभी आपका शलजम कभी खाना है, कभी आपको ककड़ी खाना है
1: जी,
0: ऐसे चीज उसमें चेंज कर लीजिए आप
1: जी।
0: तो ये हाईली फाइबर्स डाइट आपके अंदर के तमाम आमाशय को और आंतों को साफ करेंगे।
1: क्या बात है।
0: जितनी क्लीनिंग आपकी होगी उतना ज्यादा शुगर लेवल आपका बैलेंस होगा
1: जी।
0: जो बच्चे की डाइट है
1: जी,
0: वह डाइट मधुमेह की डाइट होना चाहिए
1: जी।
0: बच्चा हर बार बार खाता रहता है
1: जी,
0: तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा खाता है
1: जी,
0: बच्चा ठूस कभी नहीं खाता है
1: जी। जी,
0: है ना, हम लोग पेट भर के खाते हैं, बच्चा नहीं खाता है
1: जी।
0: तो उसी प्रकार से जो डाइट बच्चे की, वो डाइट आपकी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाइए आप,
1: यानी थोड़ी भूख बाकी रहे,
0: बाकी रहे।
1: क्या बात
0: है ना। इससे क्या होगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल अपने आप नॉर्मल आ जाएगा
1: जी।
0: उसके बाद आप बढ़िया करिए आसन
1: जी,
0: बढ़िया करिए प्राणायाम
1: जी।
0: तो डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए और खत्म करने के लिए सूर्य नमस्कार का प्रयोग आप कम से कम 6 बार तो करें।
1: सूर्य नमस्कार,
0: पहले स्लो
1: जी,
0: देन फास्ट
1: जी,
0: फिर स्लो
1: जी।
0: यदि आप 12 बार कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सांसों के साथ में
1: जी।
0: हर आसन में सांसों का गहरा महत्व है
1: जी।
0: जितनी गहरी सांसें लेके आप सूर्य नमस्कार करोगे
1: जी,
0: उतना ज्यादा
1: जी,
0: आपके बॉडी के सिस्टम, आपके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे।
1: हृदय रोग में भी
0: बिल्कुल बिल्कुल सूर्य नमस्कार बहुत इफेक्टिव है। सूर्य नमस्कार एक प्रकार से मल्टीपल ऑर्गन को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जितने हमारे पैनक्रिया है
1: जी,
0: हार्ट है
1: जी,
0: डायफ्राम मसल है
1: जी,
0: किडनी है
1: जी,
0: स्प्लिन है
1: जी,
0: लीवर है, इंटेस्टाइन है, गॉटनस ग्लैंड्स हमारी है
1: जी,
0: हमारे थायराइड है, हमारे लंग है
1: जी,
0: इन सभी को ये इसके हार्मोन्स को बैलेंस करता है
1: जी।
0: जो भी इसमें केमिकल्स पैदा होते हैं।

0: उस केमिकल्स को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार की क्रिया बहुत इफेक्टिव है
1: जी।
0: दूसरी बात, हमारे आसनों में अर्धमच्छिंद्रासन
1: जी
0: बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: पश्चिमोत्तनासन
1: जी,
0: भुजंगासन की क्रिया बहुत इफेक्टिव है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: अपान सिद्धि क्रिया, गहरी सांस लेना, गहरी सांस को बाहर निकालकर पेट को अंदर बाहर खींचना
1: जी,
0: जितना पेट को अंदर खींचोगे आपके मल्टीपल ऑर्गन स्ट्रॉन्ग बनते हैं आपके, कचरा बाहर आपका निकलता है
1: जी,
0: निफ्रॉन्स आपके क्लीन साफ होते हैं, किडनी आपकी साफ होती है
1: जी,
0: तो किडनी रोग से बचेंगे आप
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं
1: जी,
0: देखिए क्या वैक्यूम थेरेपी है पूरी है ये
1: जी,
0: श्वासों का आपकी मस्तिष्क से बहुत गहरा संबंध है
1: जी।
0: यदि जब वैक्यूम आप क्रिएट करते हैं
1: जी,
0: उसी वैक्यूम के द्वारा हम बरसात होती है
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: जब तक चक्रवात
1: जी
0: और एंटी साइक्लोन और साइक्लोन नहीं होगा
1: जी,
0: तब तक बरसात नहीं हो पाएगी
1: जी।
0: उसी प्रकार से जितना आप गहरी सांस को लेकर, गहरी सांस को बाहर निकाल के पेट को अंदर खींचते हैं
1: जी,
0: तो जो पेट में वैक्यूम तैयार होता है, उस वैक्यूम तैयार होने से आपका पेट कचरा बाहर निकलता है पहली बात, और ज्यादा सांस ले पाते तो क्लीनिंग बहुत आपकी फास्ट होती है। उस क्लीनिंग की वजह से पैनक्रिया इंसुलिन फेंकना शुरू कर देती है
1: जी,
0: दबाव पड़ता है
1: जी,
0: लीवर बाइल छोड़ना शुरू कर देता है
1: जी,
0: स्टमक एसिड छोड़ना शुरू कर देता है
1: जी।
0: तो ये जाने अनजाने हमारे अंदर के ऑर्गन अपने हार्मोन्स को छोड़ना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छी बात
0: है ना। तो इसलिए आसन की क्रियाएं आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं
1: जी।
0: उसके बाद गहरी प्राणायाम कर लीजिए आप
1: जी।
0: प्राणायाम में चंद्रभस्त्र का है
1: जी,
0: सूर्यभस्त्र का प्राणायाम है
1: जी,
0: नाड़ी शोधन की क्रियाएं हैं
1: जी,
0: है ना, कपालभाति की क्रियाएं हैं
1: जी,
0: उसके बाद आपका भस्त्र का प्राणायाम है
1: जी,
0: उज्जायी प्राणायाम है
1: जी,
0: बहुत एक सीरीज है
1: जी।
0: यदि एक घंटे आपने अपने आप को दिया
1: जी,
0: तो ना ही आप हृदय रोगी हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही मधुमेह के मरीज हो पाएंगे
1: जी,
0: ना ही रक्तचाप आपको उच्च हो पाएगा
1: जी,
0: निम्न हो पाएगा
1: जी।
0: और उसके बाद जब सारे आसन की क्रियाएं आप कर लें
1: जी,
0: देखिए एक सीरीज बता रहा हूं मैं आपको, सीरीज है
1: जी,
0: योग की जी, कम से कम आपको 30 मिनट आसन करना है।
1: क्या बात।
0: कम से कम आपको 20 मिनट प्राणायाम करना है।
1: क्या बात।
0: और प्राणायाम करने के बाद आपको 10 मिनट का ध्यान करना है।
1: 10 मिनट ध्यान
0: करना, ध्यान करिए। और ध्यान में जितना अपने आप वैक्यूम कर सकते हैं आप
1: जी,
0: है ना, थॉट्स आते हैं आने दीजिए, आते जाने दीजिए, और ब्रेन को मैसेज कन्वे करिए आप
1: जी।
0: देखिए दुनिया में सबसे जो आपका ओबीडियंट है
1: जी,
0: आगे का एक ब्रेन आपका है
1: जी,
0: आपका ब्रेन हर बात को मानता है
1: जी।
0: हमने दुनिया से दोस्ती की है
1: जी,
0: हमने कभी ब्रेन से दोस्ती नहीं करी है।
1: क्या बात है,
0: है ना। तो पहले योग सिखाता है कि अपने आप से फ्रेंडशिप करिए।
1: क्या बात।
0: अपनी दोस्ती करिए
1: जी,
0: कहो मेरे हृदय तुम्हारे क्या हाल है, हमने कभी नहीं पूछा।
1: जो ध्यान की बात आपने की तिवारी जी, इसमें हमारे श्रोताओं को बताएं इसकी क्या क्रियाविधि होना चाहिए।
0: देखिए शरीर के विश्राम का नाम ध्यान है
1: जी,
0: शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: शरीर के विश्राम का नाम नींद है
1: जी,
0: और दिमाग के विश्राम का नाम ध्यान है।
1: ध्यान है।
0: यदि शरीर विश्राम को चला गया
1: जी,
0: तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि दिमाग विश्राम को चला ही जाए।
1: क्या बात है।
0: लेकिन जब जब दिमाग विश्राम को जाता है
1: जी,
0: शरीर को विश्राम को जाना ही पड़ता है
1: जी,
0: इसकी परिभाषा है
1: जी।
0: तो ध्यान का सबसे बड़ा जो केंद्र है हमारी सांस है
1: जी,
0: मस्तिष्क और शरीर के बीच का सेतु हमारी सांस है।
1: क्या बात।
0: यदि आपने मन को सांस पर केंद्रित कर दिया तो धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप सूक्ष्म हो जाएगी।
1: क्या बात।
0: माइक्रो हो जाएगी
1: जी,
0: और वह माइक्रो ब्रीथ जो है आपके ब्रेन के तमाम कोशिकाओं को
1: जी
0: चार्ज कर देगी
1: जी। और आसन कौन सी पर रहना चाहिए अगर
0: हाँ, सुनिए ध्यान करने के लिए सबसे बढ़िया पद्मासन।
1: क्या बात।
0: इसको हम कमलासन कहते हैं
1: जी,
0: कमलासन
1: जी,
0: या पद्मासन
1: जी,
0: या सुख आसन
1: जी,
0: है ना
1: जी।
0: ये आप चौकड़ी मार के बैठ जाइए
1: जी,
0: नहीं बनता है कोई बात नहीं है
1: जी,
0: आप चेयर में बैठ जाइए, कुर्सी बैठ जाइए आप
1: जी,
0: उसमें बैठ कर सकते हैं आप
1: जी।
0: आपकी आंख बंद होना चाहिए, पीठ सीधे होना चाहिए
1: जी,
0: और आंख बंद करने के बाद में सारे आसन करने के बाद जब आप प्राणायाम कर लेते हैं उसके बाद फिर ध्यान में जाइए तो आपके अंदर डिफरेंट एक ऊर्जा होगी। और उस दौरान शरीर के अंदर जो हलचल हो रही है
1: जी,
0: उस हलचल को आप महसूस करिए, एनर्जी लेवल कहाँ जा रहा है आपका, स्पाइन को देखिए अपने आप को।
1: आपने मधुमेह के बारे में बहुत कुछ बताया, आपने ध्यान के बारे में बताया। जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं, ऐसे हमारे श्रोता, उनके लिए कौन कौन सा प्राणायाम आप उचित समझते हैं?
0: हृदय रोग के लिए सबसे बढ़िया है अपान सिद्धि क्रिया।
1: अपान सिद्धि
0: क्रिया, अपान सिद्धि क्रिया
1: जी।
0: आप पीठ के बल लेट जाएं
1: जी,
0: पीठ के बल लेट कर गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें 10 बार
1: जी,
0: और आखिरी में जो पूरी सांस फूंक मारते हुए मुख से बाहर निकाल कर
1: जी
0: पेट की मसल को कस के अंदर खींचें
1: बाहर छोड़।

0: अंदर खींचें बाहर छोड़ें,
1: जी
0: अंदर खींचें बाहर छोड़ें, तो पहली बात जो बढ़ा हुआ पेट हमारा है
1: वो घटे,
0: वो कम होगा
1: जी।
0: जब बढ़ा हुआ पेट कम होगा तो हृदय पे लोड कम आएगा।
1: क्या बात,
0: जब हृदय पे लोड कम आएगा तो हृदय की लाइफ बढ़ जाती है,
1: बढ़ जाती है।
0: हृदय रोग का जो प्रमुख कारण है कि यदि सीना आपका पतला छोटा है और पेट आपका बड़ा है, तो जब भी आप सोने जाते हैं तो पेट का भार सीने की तरफ आता है, हृदय की तरफ आता है, तो हृदय काम करने की क्षमता कम हो जाती है
1: जी।
0: और यदि आपका पेट कम हो जाता है तो पेट कम होने की वजह से हृदय तरीके से काम कर पाता है।
1: और प्राणायाम में क्या बताएं?
0: प्राणायाम में नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट है।
1: नाड़ी शोधन,
0: श्वास को लेना है,
1: हाँ,
0: श्वास को रोकना है,
1: हाँ,
0: सांस को छोड़ना है।
1: क्या बात,
0: लेफ्ट इन एंड होल्ड राइट आउट, राइट इन एंड होल्ड लेफ्ट आउट, है ना। इसकी 4, 16, 8, 5, 20, 10 यानी 4 सेकंड सांस को लेना है, 16 सेकंड सांस को रोकना है, 8 सेकंड सांस को छोड़ना है
1: जी।
0: लेफ्ट इन
1: जी,
0: होल्ड राइट आउट
1: जी,
0: राइट इन होल्ड लेफ्ट आउट
1: जी।
0: इस क्रिया को आप रोज 10 बार करिए
1: जी,
0: स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए
1: जी।
0: हृदय रोग से बचने के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है ये
1: जी। तिवारी जी, समय की सीमा देखते हुए फिलहाल तो हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपने आज यहाँ पर आके मधुमेह और हृदय रोग से संबंधित दिनचर्या कैसी हो, किस तरीके की एक्सरसाइज और साथ में प्राणायाम इत्यादि किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा राहत और बचाव भी हो सकता है, विस्तार से आपने हमारे श्रोताओं को बताया। फिर कभी मौका मिला तो किसी और विषय पे आपसे बातचीत करेंगे
0: जी।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: बहनों, अभी आपने ये भेंट वार्ता सुनी, विषय था मधुमेह, हृदय रोग और योग। विषय विशेषज्ञ थे योगाचार्य अवनीश तिवारी और इनसे बातचीत की थी डॉक्टर बैजनाथ गौतम ने। और बहनों, अब हम फिर से वापस आते हैं अपनी बातचीत पर और अब हम बात करेंगे अपने देश के युवा वर्ग की और उनके लिए एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और यह योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत युवा वर्ग को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और आतिथ्य, कृषि, निर्माण कार्य, ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं। प्रशिक्षण के सफल समापन पर इन युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होती है। इस योजना का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण प्रदान करना ही नहीं, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और उनकी रुचि के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना भी है। तो बहनों, अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपकी पहचान में ऐसे युवा हैं जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं या फिर रोजगार की तलाश में हैं, तो उन्हें आप इस योजना के विषय में ज़रूर बताएं। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से वे न केवल नौकरी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपना खुद का उद्यम भी आरंभ कर सकते हैं। ये तो निश्चित है बहनों कि जब युवा वर्ग कुशल और आत्मनिर्भर बनेगा तभी देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस योजना का लाभ उठाएं, अपने कौशल को निखारें और देश की प्रगति में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। बरखा की बूंदें गर्मी की तपिश कम करने को आतुर हैं, तो चलें हम भी प्रसन्न मन से स्वागत करें बरखा की बूंदों का। प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बाकी बातें आपसे होंगी अगले कार्यक्रम में। आज बस इतना ही। अनुमति दीजिए सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं, और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

जब तक इस देश का राजकाज अपनी भाषा में नहीं चलेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि देश में स्वराज्य है। मुरारजी देसाई।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत, और ये कार्यक्रम है आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति। तो लीजिए आपको सुनवाते हैं पहला लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों द्वारा गाए लोकगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत का, जहां आप सुनेंगे नंद कुमार जैन द्वारा गाए भजन और गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नंद कुमार जैन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है मोहम्मद इरफान की आवाज़ में फिल्म विलन से।

मिथुन का संगीत उन्हीं के लिखे बोल मोहम्मद इरफान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म विलन से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है नंदिनी श्रीकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है क्वीन।

0: अमित त्रिवेदी का संगीत, अन्विता दत्त के लिखे बोल, नन्ही श्रीकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म क्वीन से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों के प्रति सदैव समर्पित रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, आज हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के इतिहास के सबसे काले दौर में से एक यानी आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती से रक्षा की। श्री मोदी ने कहा,
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में कल एक निर्माणाधीन गोदाम का हिस्सा अचानक ढह गया था जिसमें करीब 9 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को

बड़ी आर्थिक सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों को समय पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। श्री यादव ने कहा कि सरकार की इस पारदर्शी डिजिटल हस्तांतरण प्रक्रिया से हितग्राहियों को बिना किसी परेशानी के राशि मिल रही है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पिछले 24 घंटों में सीधी और दतिया में सर्वाधिक 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री रहा। छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिलीमीटर भारी बारिश हुई है। वहीं जबलपुर में 56 और सीहोर में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली। मौसम विभाग ने सीहोर और जबलपुर में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झंझावात और वज्रपात बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है, जबकि सीधी जिले में कुछ स्थानों पर लू का भी प्रभाव रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में संचालित शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर्स और छात्रावासों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले को जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। आगर मालवा में कल आयोजित हुए कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगा। धार जिले में खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आकस्मिक निरीक्षण किया। डिंडौरी जिले में वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में सामान्य से कम वर्षा और सूखे जैसी स्थितियों की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को समय रहते आवश्यक कृषि उपाय अपनाने की सलाह दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी

0: उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
8: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
9: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची

0: H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे पत्रों को पढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद के गीत। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पहला गीत हम कौन सा सुनने वाले हैं और उसके लिए जो हमें फरमाइश मिली है वो कहां से प्राप्त हुई है। तो उदित नारायण की आवाज़ में साथ ही कविता कृष्णमूर्ति हम गीत सुनेंगे फिल्म हद कर दिया आपने से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन की तरफ से। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिक पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम देवाल से शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराडे। ग्राम छेंगा और देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे की तरफ से। तो लीजिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत।

फिल्म हद कर दिया आपने से गीत सुना आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया था आनंद राज आनंद ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, और इस गीत के लिए फरमाइशी पत्र हमें मिला है। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का।

पटेल नगर मरनोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया का, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय का। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से यह अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

आर डी बर्मन का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गयाजीपुर मंडला से वीरेंद्र कुमार पंजाबी और राधेश्याम चावला की ओर से। इसके अलावा यादव मोहल्ला सनावन मध्य प्रदेश से लिखा है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जीतेंद्र धर्मेंद्र मालाकार की तरफ से। प्रियंका पंचौलिया, संजय पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचौलिया ने हमें लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शंकर जयकिशन का संगीत, नीरज के लिखे बोल, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कन्यादान से। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आपकी फरमाइश का, और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है अगले गीत को सुनने का, जो हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पाकीज़ा से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की तरफ से। गोला बाज़ार बक्सर से हमें लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ से, जो है पंजाब में, हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की ओर से। तो आप सभी श्रोताओं के लिए लीजिए प्रस्तुत है अगला गीत फिल्म पाकीज़ा से, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

गुलाम मोहम्मद का संगीत कैफ़ी आज़मी के लिखे बोल। लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे फिल्म पाकीज़ा से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और आपकी फरमाइश पर ही अगला गीत आपको सुनवाएंगे कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है ताल और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। इसके अलावा एक और पत्र हमें मिला है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की ओर से। कवर कॉलोनी बड़वाह से हमें लिखा है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म ताल से।

0: एआर रहमान का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना फिल्म ताल से, और इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारा पता नोट कर लें ताकि आप अपने पत्र भेजते रहें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश, पिन कोड है 462002। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान दिवस संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 33.92 लाख से अधिक लाभार्थियों को बड़ी आर्थिक सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से 203.56 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निशकजन के लिए आग, हीट वेव और आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में ब्रेल लिपि में प्रकाशित पुस्तक का आज लोकार्पण किया। और राज्य में मॉनसून ने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के 15 जिलों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों को भी कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए अब हम आपको आज की सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर सुने युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य मैनचेस्टर में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनवाया जाएगा आज शाम 6:30 से। इसे हम खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई है मुंबई के सरजमी पर और
2: मुंबई के अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहाँ छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियाँ भर जाएं, तालाब झरने और कल कल बहने लगे, मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े। और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस
2: जी।
1: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं
2: जी,
1: तो उनकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं तो पहली शर्त यह है कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
2: वैसे भी
1: लेंगे।
2: जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहाँ नदी, झील, झरने ऐसी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके। और बहुत ही उनकी कठिन ज़िंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के ख़ास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
1: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर जहाँ पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं कम होते, दो चार होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है न कि आपके धन की धन, तो ये ध्यान रखें। अक्सर किसी जगह पर जब जहाँ पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई, तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत ज़रूरी कर दिया है और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
2: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले ज़रूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी, कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए हैं कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा
1: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के दल बना के जाना वो एक अलग अनुभव होता है क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है, लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है। भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं और सब झुंड बना के जाते हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसासात को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल, और रमीला बेन, ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी दी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और ख़ास तौर पे अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थीं उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते थे इस चीज़ से। महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतज़ार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता
0: बिल्कुल
1: है,
0: सही कहा।
1: क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उससे निकालना

0: मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
1: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की ज़रूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गईं, लेकिन वो अडिग रहीं और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रहीं।
0: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज़्यादा स्वच्छता इकाइयाँ बनवाई, जिससे कुछ गाँव खुले में शौच मुक्त हो गए।
1: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी थी। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
0: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की इस संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुँचाने का माध्यम भी बने।
1: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव जो ये भाव था उसको बढ़ावा दिया।
0: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए, और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज़्यादा थीं कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास के से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थीं निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
1: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थीं, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थीं। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गाँवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गाँवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियाँ, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थीं।
0: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी, और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए
1: ममता जी, मैं यहाँ करेक्शन
0: मिला।
1: करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
0: 2022, बिल्कुल सही कहा आपने। और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
1: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और रमीला बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज़्यादा शौचालय वहाँ पर वो बनवा चुकी हैं, या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड
1: जी
0: रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही
1: हाँ।
0: हैं, फलानी चाची आ रही हैं,
1: और
0: फलानी जगह
1: कोई
0: की
1: मत
0: भाभी
1: वाला
0: आ
1: आया
0: रही
1: मेरे द्वारे ही तो होता है
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी,
1: हाँ
0: पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह
1: हाँ
0: जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: जयपुर वाली
0: लग
1: चाची,
0: हाँ।
1: आगरा वाले
0: और
1: ताऊ
0: कई बार
1: जी
0: तो भाभी और चाची का वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही हैं, देखिए
1: हाँ
0: ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फ़ोन पर बात करना, और एक जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मज़ा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को

0: तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊ जी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी ब्याह में जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं, जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा।
1: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
0: जी
1: बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
0: जी
1: टाइम पे नाश्ता चाहिए। वही दायरा, उसी दायरे में से मटकर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
0: हाँ
1: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ। तो उनको पता ही नहीं है कि फ़ोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहाँ तक बात है कि पढ़ाई पे
0: जी
1: विघ्न आता, तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
0: अगर
1: शादी है
0: कोई
1: तो।
0: बहुत ज़रूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं के वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़िद करके बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहाँ उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब ज़रा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
0: जी
1: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्यौहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है, पुरानी बातें ताज़ा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उस पे जो ठहाके लगते हैं ज़ोरदार, और वो ठहाके कमरे में ही नहीं आंगन तक, बरामदे तक गूंजते हैं,
0: बिल्कुल,
1: उसकी
0: बहुत सारी
1: बात अलग
0: छेड़छाड़
1: होती है।
0: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो
1: गया,
0: गए हो।
1: बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया। तो ये सब होता है, और समय का अंतराल कई बार कुछ चीज़ों को विस्मृत कर देता है, जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताज़ा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष
1: ज़्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये भी
0: हाँ
1: होता है। अब ज़्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक
0: जी
1: गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं,

0: तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं। और फिर शादी बीत जाती है, लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी
1: जी
0: खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज़ है, वो फ़ोन नहीं कर रही हैं, बात नहीं कर रही हैं, फलानी दीदी नाराज़ है कि वो फोन
1: जी
0: नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती हैं जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
1: अब इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोबल, और फिर सब एक ही जगह मिलकर बैठकर हंसी ठहाके में लगाकर बड़ा एंजॉय करते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले महीने ही हमारे परिवार में विवाह था। हम सब ने तय कर लिया था कि सभी आएंगे। मई में शादी इसलिए रखी थी कि बच्चे भी फ्री हो जाएंगे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए, बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई। बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला, और बुज़ुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज़्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है,
1: जी
0: और रात को जो महलूल होता है अगर बेटे की शादी है
1: जी
0: तो उसमें सबसे ज़्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन
1: लेकिन हाँ
0: उसमें पुरुष भी
1: जी
0: शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के
1: लेकिन
0: साथ।
1: जब नहीं पहुंच पाते हैं उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत ख़राब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है इनका
0: इनका
1: संदेश।
0: कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली,
1: हाँ
0: बच्चों के इम्तिहान हैं। दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए,
1: जी
0: ठीक है उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं
1: जी
0: उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत ना करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष श्रोता शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहाँ हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहाँ पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हाँ मिलाते हुए हंस रहे थे, और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई, और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता
1: जी
0: है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि
1: हाँ
0: हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ कुछ दिक्कत हुई हो, जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
0: पर
1: है।
0: रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं, तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सब सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्मों रिवाज का ख्याल रखना। तो जो

0: रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीज़ें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है।
0: अमूमन ऐसा होता है। अब
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मज़े की बात चल रही है, तो गाने सुन लें।
0: सुनते हैं।

0: भाई ममता जी, शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है। सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं, जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ढोल, नगाड़े, संगीत, हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से, यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुनबे से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें, लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी, तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं, शादी और उसी व्यस्तता

0: में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई, बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मज़ा आता है। संगत में पत्तल में बैठकर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताज़ा कर दी।
1: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते ही इसलिए हैं कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहाँ पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापर, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल
0: क्या बात है
1: रिश्तों
0: भाई।
1: को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोहों में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
0: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा है कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं, मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी ज़माना है।
1: जी,
0: अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकाल कर एक दूसरे से मिल सकें और उनका हाल चाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दी गई, उसके जवाब में लिखा है, अभी अभी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज़्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं।
1: जी
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मज़ेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी
1: जी
0: तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मज़े किए, डांस किया, बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
1: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं। हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफ़ी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। कि हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहाँ जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं।
1: और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज़्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए

0: तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, दो चार वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
1: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
0: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे बोर्ड,
1: पीली स्टिकी ट्रैप लगाएं,
0: हाँ
1: मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं, ताकि वो
0: ये
1: जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
0: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80 से 90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ख़ासतौर पर जो भी वस्तुएँ हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुँचाया जाता है।
1: बिल्कुल। और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन वहाँ तक नहीं
0: बिल्कुल
1: पहुँचता है,
0: सही,
1: तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों
0: जी
1: तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
0: बिल्कुल। इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन हैं वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: ये था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम जिसमें आप श्रोता कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और अपने विचार रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे ही विचार आप श्रोताओं के द्वारा विविध भारती को लेकर, विविध भारती के कार्यक्रमों को लेकर। तो सुनते हैं आज का हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी। नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है जी कल्लू मनियार, चिड़ी वाला।
0: कल्लू जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर मनियारा और जी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश।
0: अच्छी बात है, अपने बारे में बताइए, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया, शुक्र है मालिक का, आपकी दुआएं हैं। मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
0: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
1: जी हाँ, गाँव में जो रामपुर के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
0: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे? गिरने का डर नहीं रहता है? चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
1: अजी बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
0: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
1: अजी फिर मैं गांव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दें कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं, चूड़ी पहन लो। अच्छा। तो

0: हम एक बजे रास्ते ही चालू हो जाता सर, सुबह 11 बजे तक सर, यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता है सर, करीब 10 बजे तक रात को।
1: क्या बात है ना, प्यार है आपको
0: जी
1: विविध भारती से कि रात को 1 बजे से
0: जी
1: कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
0: जी मैम, आपका ये सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है ना 3 बजे रात को,
1: हाँ बिल्कुल
0: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
1: अच्छी बात है, आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
0: जी मैम, ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
1: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा,
0: जी मैम, उसमें मेहनत तो काम ज्यादा पड़ता है।
1: और उसमें से भी आप
0: हाँ
1: समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात
0: नहीं,
1: है।
0: वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा। जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं, पहले
1: अच्छी बात है,
0: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो फिर ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
1: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
0: हेमलता जी का गाना है, भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर।
1: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी, क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में राम बाबू जी।
1: अपने ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है, जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है उसकी आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर
0: चलते ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है मन चाहेगी।
0: अच्छा चलिए सुने आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ,
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ और मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
0: गा के सुनाइए।
1: चलती ट्रेन में चलती चाय पी ले पी ले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पी ले आएगी सुस्ती मरेगी सुस्ती, एक प्याली पी ले भाई पी ले पी ले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पी ले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
0: क्या
1: बोल,
0: बात है।
1: और अंतरा सुनाया।
0: अच्छा, जो
1: जी हाँ जी
0: लिखते
1: हाँ,
0: हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
1: सूफियाना, जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलदे ने, सब सियाने मिलदे ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलदे ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलदे ने ते कमला कोई कोई।
0: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली
1: जी
0: मुलाकात
1: हाँ
0: में
1: जी हाँ
0: फिर
1: जी हाँ
0: आपसे
1: जी
0: कोई
1: हाँ,
0: नया गीत सुनेंगे, बताइए।
1: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवियों तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, चार सपेन, चार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: जी, मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता था। गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के ही दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ,
1: लड़के की भेष में रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बाग जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है। और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, चुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित तो गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मल्लिक का संगीत है। गीत के बोल है, पायले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुंझुन रुंझुन, कितना मधुर है ये मिलन।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मंदाग्नि जी बोल रही है?
0: हाँ जी, हाँ जी
1: जी जी गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला राजगढ़ द्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार
1: और
0: और
1: शायद
0: स्नेह
1: मैंने
0: है।
1: दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही। तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी
0: बताइए गजराज जी, आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी
0: अच्छा, आप करते हैं?
1: जी
0: अरे वाह, क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया।
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है विविध भारती तो।
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते
1: जी
0: होंगे,
1: जी
0: लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग,
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी जी
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ, बस अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती हैं और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए क्या? आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश हैं तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज़।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी, जी।
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज़ तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी। मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ जी।
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, प्यार भी नमस्कार आपको
0: सुनते
1: जी।
0: हैं हमारे
1: जी
0: कार्यक्रम,
1: मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से। हाँ
0: क्या बात है।
1: जी, बस एक क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको और मेरा नाम जुड़ा रहे अभी भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है,
1: जी देखिए,
0: नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, मतलब कि जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोरियत महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम
1: हाँ जी
0: उनके
1: हाँ जी
0: कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे
1: हाँ
0: दादा
1: जी
0: की ये बिजनेस था और उनके बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। तो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम
1: जी
0: पेश
1: जी
0: करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी में लाइक भी करता हूँ। जो आपने
0: हमारे
1: 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने दी
0: दी हवा,
1: हवा
0: थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल
1: और
0: गई।
1: आगे जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजना चाहते हैं, हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। प्रारंभ में आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत @2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब हमारे युवा श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की है।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रश्मि मिश्रा
1: और मैं सनाया नायक।
0: हम आप सभी का युवाओं को ऊर्जावान बनाने वाले हमारे खास कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ई वेस्ट दिन प्रतिदिन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और हम इससे कैसे उचित तरह से निपट सकते हैं।
0: जी हाँ दोस्तों, साथ ही आज हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी के साथ एक भेंट वार्ता से जानेंगे युवाओं के साथ हो रहे अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में।
1: साथ ही मैं जानेंगे कि आपके और हमारे यानी युवाओं के समाज के प्रति क्या दायित्व हैं।
0: और हाँ, हमारे पास आपके लिए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी हैं। तो चलिए, आज का हमारा संगीतमय सफर शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था।
0: दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं आज का पहला गीत, जिसे लिया गया है फिल्म धड़क 2 से। गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली ने।

0: दोस्तों, आज के दौर का एक महत्वपूर्ण एवं चिंताजनक पहलू है टेक अपग्रेड्स के प्रति हमारी अनियंत्रित ऑब्सेशन। फिर चाहे वह हर आईफोन का नया मॉडल हो या फिर अच्छे खासे वायर्ड ईयरफोन्स की जगह पहले नेक बैंड और फिर ट्रेंडी ईयरपॉड्स लेना, अच्छी तरह काम कर रहे लैपटॉप को उसके स्लीकर वर्जन से रिप्लेस करने की चाहत हमें एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है और नतीजा हमें पता भी नहीं चलता और हम ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक विशाल पहाड़ पैदा कर चुके होते हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट का मतलब है वह सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिनका उपयोगी जीवन खत्म हो चुका है। इसमें पुराने फोन्स और टूटे कंप्यूटर्स के पार्ट्स से लेकर हमारे इस्तेमाल की जाने वाली बैटरीज और पुराने हो चुके घरेलू उपकरण, सब कुछ शामिल है। हर साल बाजार में नए मॉडल आ जाते हैं, इसलिए पुराने उपकरणों को जल्द ही बेकार मान लिया जाता है और अक्सर वे लैंडफिल्स में चले जाते हैं।
0: दोस्तों, ई वेस्ट की समस्या इसकी मात्रा से कहीं और बड़ी है। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लेड, मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अनुचित तरह से निपटान किया जाता है तो यह पदार्थ मिट्टी और ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए ही गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ई वेस्ट को जलाने से जहरीला धुआं निकलता है और इससे रेस्पिरेटरी समस्याएं भी पैदा होती हैं।
1: दोस्तों, ई वेस्ट पर्यावरणीय समस्या पैदा कर सकता है, परंतु इसमें मौजूद कीमती धातुओं का पुनः उपयोग एक आर्थिक अवसर भी प्रदान कर सकता है, इसलिए ई वेस्ट का सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
0: इसी के साथ आइए सुनते हैं फिल्म ऊंचाई से यह गीत, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: आइए दोस्तों, जानते हैं युवाओं के साथ होने वाले अपराध और उनसे संबंधित कानून के बारे में इस भेंट वार्ता द्वारा।
1: विशेषज्ञ हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी। इनसे बातचीत की है नीला बाजपेयी ने।
2: श्रोताओं, समय समय पर हम अपनी भेंट वार्ताओं के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं और ऐसे ही एक नई जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून। और इस विषय पर आज विस्तार से बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री अभिजीत अवस्थी जी को, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता डिप्टी एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त हैं। अवस्थी जी, आपका हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ आकर आप लोगों के साथ मैं अपने विचार साझा कर सकूंगा, इसके इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे कि किशोर न्याय अधिनियम की अगर हम बात करें तो जेजे एक्ट 2015 के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराधों के लिए वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान है। आपके विचार से यह बदलाव कितना प्रभावी रहा है और क्या इससे अपराधों में कमी आई है?
3: देखिए, यह प्रावधान निर्भया कांड के बाद जनभावना और गंभीर अपराधों को की रोकथाम की दृष्टि से लाया गया था
2: जी।
3: किसी भी इस तरह के प्रावधानों का जो जो जो पर्पज़ होता है, जो कारण होता है, वो रहता है कि लोगों के अंदर एक डर लाना कि अगर वह इस तरीके के अपराधों में संलिप्त होंगे
2: जी,
3: तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी
2: जी।
3: जहाँ तक यह इसका कितना प्रभाव रहा है, इसको देखने के लिए हमें एक्चुअली केस टू केस बेसिस पे मूल्यांकन करना होगा
2: जी।
3: परंतु ये जरूर हुआ है कि लोगों के अंदर जो है ज्यादा इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध होने के कारण, और एक चूंकि ये पूरा प्रकरण ही जनभावना के आधार पे हुआ था, जो बदलाव था
2: जी,
3: इस कारण से लोगों के अंदर अब ये जागरूकता आ गई है कि अगर वो इस तरीके के किसी कार्य में संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी
2: जी। जी, अब अवस्थी जी, अगर हम बात करें भारतीय न्यायिक संहिता की, तो भारतीय न्यायिक संहिता में पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा, जिसे हम कम्युनिटी सर्विस भी बोलते हैं, का विकल्प दिया गया है। तो युवाओं को अपराधी बनने से रोकने में ये कदम कितना मददगार साबित हो रहा है आपकी नज़र में?
3: यह एक प्रगतिशील और मेरे हिसाब से स्वागत योग्य कदम है
2: जी।
3: छोटे अपराधों में जो पहली बार युवा जिनको जेल जाना पड़ता है
2: जी,
3: उन्हें समाज से जोड़े रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम उन्हें जेल में हार्डकोर अपराधियों के संपर्क में आने से बचाएं
2: जी।
3: और इससे होगा क्या कि जो उनमें सुधार की संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी
2: जी,
3: और इसके साथ साथ जो एक अपराधी का स्थायी थप्पा लग जाता है वो भी नहीं होगा। परंतु ये आवश्यक है कि उनके ऊपर लगातार निगरानी रखना भी आवश्यक रहेगी, बट मेरे हिसाब से ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है
2: जी। युवाओं से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है आपसे।

0: आजकल देखा जाता है कि युवाओं में बिना मेहनत किए जल्दी अमीर बनने की चाहत रहती है, जैसे हम एक तरीके से फास्ट मनी कल्चर बोलते हैं, ये बहुत बढ़ गई है। तो ये मानसिकता उन्हें साइबर फ्रॉड या संगठित अपराधों की तरफ कैसे धकेल रही है?
1: देखिए, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं लगातार जो चकाचौंध है, और मोस्टली सोशल मीडिया पे लोग जो उनके जो मूल रूप से वो हैं वो ना दर्शाते हुए वो जो लोगों में एक ऐसा भावना, एक ऐसी इम्प्रेशन लाना चाहते हैं कि वो सब कुछ अचीव कर चुके हैं या वो बहुत फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। इसके कारण ये होता है कि जो युवाओं जो दूसरे उनके साथ वाले हैं उनके ऊपर एक सफलता का दबाव सा महसूस करते हैं, इस कारण से वो लगातार इस तरीके के अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं।
0: जी
1: अब इसमें इसका जो आंसर है वो तो सिंपलीसिटर यही रहेगा कि उन्हें ऐसे स्कीमों से बचना चाहिए, साथ में उनको ये जानना चाहिए कि उनको स्वयं अपना किस तरीके से वो अपनी एजुकेशन शिक्षा पूरी करके
0: जी
1: किस तरीके से वो प्रोफेशनल कोर्सेज में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी जो ये जो उनकी ये कहना चाहिए स्किल है
0: जी
1: उसका
0: जी
1: उपयोग कर सकते हैं
0: जी
1: अच्छी अच्छे कार्यों के लिए।
0: जी जी अवश्य जी, अगर हम बात करें पीयर प्रेशर या दोस्तों का दबाव और पारिवारिक माहौल किसी युवा के अपराधी बनने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, यदि परिवार में संवाद की कमी है तो इसके क्या परिणाम होते हैं?
1: देखिए, मेरे हिसाब से तो इनकी भूमिका निर्णायक है।
0: जी
1: किशोर अवस्था में चूंकि व्यक्ति जो रहता है वो लगातार अपनी पहचान बनाना चाहता है,
0: जी
1: वो अपने साथ वालों में अपनी स्वीकृति चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई लोग उसे सफल माने। तो इसके चलते जो है वो कई बार ऐसा हुआ है कि आप गलत संगत की ओर ले जाता है चले जाते हैं, और अगर परिवार में संवाद की कमी होती है तो फिर लोग बाहर जो गलत लोगों के संगत में आके समस्याओं में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि भाई संवाद परिवार में लगातार होता रहे, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराते रहना चाहिए कि शिक्षा का महत्व बहुत अधिक है,
0: जी
1: और जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती है आप इस तरह के किसी भी अगर आप कृत्य में लगते हैं तो आपके लिए आने वाले समय में डिफ़िकल्टी हो सकती है।
0: जी अवस्थी जी, आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया या ओटीटी का बहुत चलन है, तो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जाने वाली हिंसा या अश्लीलता युवाओं के व्यवहार को किस हद तक आक्रामक बना रही है? क्या इस पर किसी तरह के कानूनी सेंसरशिप की आवश्यकता है क्या?
1: देखिए, लगातार हिंसक या आपत्तिजनक सामग्री के संपर्क में रहने से संवेदनहीनता तो बढ़ती है,
0: जी
1: इसको हम नकार नहीं सकते, और यह चिंता भी वास्तविक है इस कारण से। परंतु मेरे मत में पूर्ण कानूनी सेंसरशिप उसका जवाब नहीं है,
0: जी
1: बल्कि लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में साक्षरता लाना आवश्यक है, उसको एक शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए कि जहाँ पर डिजिटल मीडिया का उपयोग या फिर OTT का उपयोग किस अनुरूप होना चाहिए, इसकी जागरूकता लानी चाहिए। क्योंकि सेंसरशिप हर चीज़ को रोक देना उसका जवाब नहीं होता,
0: जी
1: बल्कि यह है कि उसके बारे में अवगत कराना ज़्यादा मेरे हिसाब से कारगर होगा।
0: जी जी जी आजकल देखा जाता है कि साइबर क्राइम में पकड़े जाने वाले अधिकांश आरोपी जो हैं वो 18 से 25 वर्ष के युवा होते हैं। इस तकनीकी युग में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल को कितना अपग्रेड करने की ज़रूरत है? आपके इस पर क्या विचार हैं?
1: देखिए, जब अधिकांश आरोपी तकनीक में दक्ष होते हैं तो उनके लिए जो पारंपरिक पुलिसिंग के जो तरीके हैं वो नाकाफ़ी हो जाते हैं,
0: जी
1: अतः ये तो ऑफकोर्स आवश्यक है कि एक हमारे यहाँ ऑलरेडी एक समर्पित साइबर सेल का गठन हो चुका है, थाने हैं, और आप वहाँ पर जो है वो आधुनिक फॉरेंसिक उपकरण भी उपलब्ध हैं,
0: जी
1: और इसमें जो लगातार जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, और साथ में उनको लगातार जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ उनकी साझेदारी की जा रही है। और अब इससे ऑफकोर्स ये ज़रूर होता है कि जो पुलिस बल है उसको निरंतर अपग्रेड करना अब विकल्प नहीं, अनिवार्यता हो गई है।
0: जी
1: तो मेरी नज़र में जो अभी हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो काफ़ी हैं,
0: जी
1: और लगातार ऐसे क्राइम्स से उनको रोकने के लिए हमने जागरूकता के अभियान भी लाए गए हैं, और साथ में हमारे पास तकनीकें उपलब्ध हैं जिससे ऐसे अपराधियों को जल्दी और तुरंत पकड़ा जा सकता है।
0: जी अगर हम बात करें सोशल मीडिया की दोबारा, तो सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और युवाओं द्वारा ऑनलाइन की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां, जैसे हम हेट स्पीच या स्टॉकिंग बोलते हैं, के बीच की कानूनी सीमा बहुत धुंधली है। कानून की नज़र में सीमा को युवाओं के लिए कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है?
1: देखिए, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बनाम ऑनलाइन अभद्रता की सीमा, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इसके लिए ये कहना आवश्यक होगा कि भाई हमें इरादा और नुकसान, इन दो शब्दों का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा। कोई भी स्वस्थ आलोचना या असहमति स्वतंत्रता है, पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाना, धमकाना या उनको स्टॉक करना, वो गलत है। युवाओं के लिए इसे सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि तुम्हारी आज़ादी वहीं समाप्त होती है जहां से दूसरे का सम्मान या सुरक्षा खतरे में पड़ता है।
0: जी बिल्कुल।
1: स्कूल कॉलेज स्तर पर डिजिटल आचार संहिता की शिक्षा मेरे मत में इस धुंधली रेखा को स्पष्ट करने में सबसे प्रभावी होगी।
0: जी
1: मैं मेरी नज़र में ये आवश्यक है कि हम लगातार लोगों में ये जागरूकता, बच्चों में ये जागरूकता लेकर आएँ कि कहाँ तक उनकी जो आज़ादी है वो उन्हें वो आज़ादी उपलब्ध है और किस लाइन को क्रॉस करने, किस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद जो है वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा।
0: चलते चलते अवस्थी जी, आप हमारे सुनने वालों को आकाशवाणी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा संदेश, मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं के लिए कि शिक्षा का कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
0: जी,
1: शिक्षा पूर्ण करना और लगातार यह संयम बरतना कि वो गलत संगत में ना आए, आसान पैसा कमा पाने की जो एक चाहत जो डेवलप हो रही है उसको कम करें। अपनी जो बेसिक शिक्षा है उसको पूर्ण करने के उपरांत ही वो, और लगातार ये आवश्यक है कि लगातार परिवार से अपने सारे जो परेशानियां हैं उसके बारे में लगातार वो डिस्कस करते रहें, उनसे आपस में चर्चा करते रहें। आई थिंक अगर पारिवारिक रूप से वो जुड़े रहेंगे, अच्छी संगत में रहेंगे और अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे
0: जी,
1: तो मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी जो चुनौतियाँ हमने जिस पे चर्चा करी
0: जी,
1: उन चुनौतियों का बहुत फर्क पड़ेगा।
0: जी जी। अभिजीत अवस्थी जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने युवाओं में अपराध और उनसे संबंधित कानून, इस विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। हम आशा करते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे। आपको आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ आपने बुलाया, थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डेप्यूटी एडवोकेट जनरल अभिजीत अवस्थी द्वारा। हमने इससे सीखा कि युवाओं के प्रति क्या अपराध हो रहे हैं और उनसे संबंधित क्या कानून है। इसी के साथ आइए शामिल करते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म हिचकी से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: रश्मि, क्या तुमने सोचा है कि जब भी देश के भविष्य की बात होती है, तो सबसे पहले युवाओं का ही नाम क्यों लिया जाता है?
1: बिल्कुल सोचा है सनाया, क्योंकि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनमें ऊर्जा है, नए विचार हैं, बदलाव लाने का साहस है और समाज को नई दिशा देने की क्षमता भी है।
0: सही कहा, लेकिन केवल युवा होना ही पर्याप्त नहीं है। एक सच्चे युवा की पहचान उसके सामाजिक दायित्वों से होती है। यदि हम केवल अपनी पढ़ाई, नौकरी और करियर तक ही सीमित रह जाएं, तो हाँ, हम सफल व्यक्ति तो जरूर बन सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक नहीं।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं आज का अगला गीत। इसे लिया गया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और गाया है विशाल ददलानी और सचिन जिगर ने।

0: दोस्तों अब वक्त है आज के दो प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में पाए जाने वाले ब्लैक होल का क्या नाम है? इसका उत्तर है सैजिटेरियस ए।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किए गए वे कौन व्यक्ति थे जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया था? कर्पूरी ठाकुर।
0: इसी के साथ दोस्तों आज हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर पहुंच चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में नई चर्चाओं के साथ। तब तक दयालु बने,
1: जिज्ञासु बने।

0: यथा युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में गोदाम की छत गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत @

0: 2047 की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रदेश के युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। यह आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजे प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन

0: गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भशास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है।

0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में

0: के कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
3: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जितेश जी नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: तो जितेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
4: जी,
1: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
5: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
1: जी,
5: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
1: जी,
5: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
1: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
5: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति
5: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
5: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
5: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
5: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति
5: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
5: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
5: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
5: जी।
1: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनिंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
6: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अब सुनिए सूचना। श्रोताओं, आपके मैसेज हमारे गीत कार्यक्रम आपके लिए शुक्रवार रात 9:30 बजे से रात 10 बजे तक आपके अपने प्राइमरी चैनल पर। इस बार की 5 फिल्में जिनके लिए आपको व्हाट्सएप संदेश भेजना है शुक्रवार शाम 5 बजे तक, फिल्में हैं नैया, बोल हैं ओ गोरिया रे, तेरे आने से, गायक कलाकार हैं यसुदास, एक प्यार का नगमा है, फिल्म है शोर, गायक कलाकार मुकेश लता मंगेशकर, तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी, फिल्म मासूम, लता मंगेशकर, अगर तुम ना होते किशोर कुमार, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते, तुम मिले दिल खिले, क्रिमिनल कुमार सानू। हमारा मोबाइल नंबर है 9425149342। इसे एक बार फिर से सुन लें, 9425149342। आपके संदेश हमें शाम 5 बजे तक मिल जाने चाहिए। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 होना चाहते हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और बांग्लादेश के मध्य खेले जाने वाले मैच के आंखों देखा हाल के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।

अभी अब आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए टी20 क्रिकेट मैच पर आधारित

0: विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत।

आशा भोसले भूपिंदर को भी आप सुन रहे थे फिल्म थी उस्तादी उस्ताद से। इंसान फिल्म से सुनी मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की

0: कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the President of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath.